0: कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना। मंदा चंगा अपना पेह कीता भावना, हुक्म किए मन भाव दे राह भीड़े अगे जावना। नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना, करे औगुण पछतावना, करे औगुण पछतावना।
1: राम कली महला तीजा आनंद को अहंकार।

मात पात दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख आपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहेब ते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो। ए नमाणिया दे मान नितानिया दे तान नियोटिया दी ओट धन धन। श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ। जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ। सरबत साध संगत नो अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा।

0: दया कपाह संतोख सुमुख जत गंढी सतवट एज ने उजी का है ता पांडे कत ना है तुटे ना मल लगे ना है जले ना जाए तन सुनान स्नान का जोगल चला पा चौंकुट मुलाया बह चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थया ओ मा ओ चढ़ पाया तक गया महला पहला
1: लख चोरियां लख यारियां लख कुड़ियां लख काल लख ठगियां पहना मियां रा दिन नाल तक पाहु पतिये बामन वटे आए कोई बकरा रिन खाया सबको आखे पाए हो।

0: पहला गौ ब्राह्मण को करला वो गोबर करन ना जाय तो टिटका ता जब माली तान मले शाखाय अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका भाय छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए त्रंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवार सूरी भगवान तिन का ताग तिन हर ब्राह्मण पूरे लाद उना भी आवे हो साथ कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया परपूर
0: मत्था टिका देर पति दिखाई हर

0: हुणे तुसी सरवण कर रहे सी श्री दरबार साहब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर के 6 बज रहे ने, आओ लै चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र जितों हिंदी च समाचार सुनोगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी,

0: नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पामला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सर्वन करते हैं भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना। सवेर की इस पावन घड़ी विच आओ कुछ पल अपने मन नू दुनियावी चिंतावां तो परे करके उस परम शक्ति नाल जोड़िए जिस दी कृपा तो बिना जीवन का कोई भी पल संपूर्ण नहीं होंदा। जदों मन विच भरोसा होवे, बुलां ते नाम होवे, दिल विच शुकराना होवे तां औखे राह भी सौखे लगदे ने। सो आओ अज दी सवेर दे विच शुरुआत करदे हां प्रभु दे नाम दे नाल, प्यार अते भगती दे सुरां दे नाल इस प्रोग्राम दी जिसका नाम है जी आराधना।

0: रुलिया राम जी, जय हिंद जी।
1: जय हिंद जी, जय हिंद जी। रंगा सिंह जी, बच्चालो की हाल चाल है तेरा?
0: हाल चाल वाह वाह पली, कृपा उस परमात्मा दी।
1: बिल्कुल बनी रहनी चाहिए है, हर इंसान ते बनी रहनी चाहिए है। देखो रंगा सिंह जी, जिदा कहने कि समा जड़ा है, समय के लिहाज न जो आप खेतीबाड़ी के बदलाव लै आए
0: जी,
1: तो फिर साढ़े तो बोझ घट जाता है, वजन घट जाता है। जे असी उ रवायती फसली चक्रां दे विच फसे रहांगे।

नरक के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधुमत, लोकमत, राजनीति तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं।

छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया, किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्रीराम के प्रेम की रीति देखी है, उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः स्विस् राष्ट्रपतिना गाय पार्मिलेन् इत्यमुना सह मन्त्रणानन्तरं पञ्चसहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। अत्रावधेयं यत् सन्धयः तावत् जनप्रवासाय, युवव्यावसायिकविनिमयाय, परिवहनप्रौद्योगिकीविकासाय च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् उभौ देशौ रक्षासहयोगे नूतनक्षेत्राणाम् अन्वेषणं विधास्यतः। परमाणुऊर्जाक्षेत्रे च परस्परसम्बन्धम् अत्यन्तं सुदृढं करिष्यतः।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने

वैसे दोस्तों अक्सर ना असी समय की कदर नहीं करते, असी सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लवांगे, कल नहीं परसों कर लवांगे। तो जो असी अज के दिन की गल करते हैं ना, तो अज 6 अक्टूबर है, साल के करीब करीब 279 दिन जड़े ना वो बीत चुके हैं, तो 86 दिन हले भी बाकी ने। जरा सोचो कि 2026 के 279 दिन साडे जिंदगी की किताब के सफ़िया के वांग साढ़े पिछे रह गए ने। इन्हां दिनां दे विच कदे खुशी भी जरूर मिली होनी है, तो कदे मन उदास भी जरूर होया होना, कदे कोई अपना मिलिया भी होना है, तो कदे किसी अपने तो तुहाडी दूरी भी जरूर बनी होनी है। कई सुपने पूरे भी होए तो कई अजे भी अधूरे साडियां अखां दे विच जिउंदे पए ने। पर अज दी सब तो खूबसूरत गल ये है कि कहानी हले बाकी है, साडे कोल 86 दिन होर भी पए ने। किसी नूं अपना बनाउण लई, किसी नूं माफ़ करन लई, अपने किसी अधूरे सुपने वल एक कदम होर वधाउण लई, ते अपने आप नूं इह कहण लई कि मैं अजे भी कर सकदी हाँ या कर सकदा। कई बार ना असीं सोचदे हाँ कि हुण तां साल भी लंघ गया, हुण की रह गया, बस थोड़े जिहे दिन रह गए ने, पर हुण की बदलना। पर बदला लई एक जनवरी की उड़ीक करनी क्यों है जब हाले भी साढ़े को दिन बाकी पे ने। सो 6 अक्टूबर की नवी शुरुआत बन सकती है, अज तो बाकी रहिंदे 86 दिनों शिकायतों विच नहीं सगों शुकराने दे विच बताइए, पछतावे विच नहीं सगों उम्मीद दे विच बताइए, ते सिर्फ ही दिन गिनने की बजाय हर दिन नू जीना सीखिए, क्योंकि साल के किन्ने दिन बीत गए ये साढ़े हाथ विच नहीं, पर बाकी रहिंदे दिन जड़े ने उन्हां नू किवें जीना ये फैसला असीं जरूर कर सकते।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार

0: और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
3: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और

0: विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर मुख्य अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
2: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
3: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
4: इन माय ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंड्रम और केरला बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। इफ इवन अ फ्रैक्शन ऑफ शिपमेंट्स प्रेजेंटली हैंडल्ड थ्रू द फॉरेन पोर्ट्स लाइक कोलंबो, जबलाली इन दुबई और सिंगापुर कुड बी ब्रॉट बैक टू विजिंजम, आई एम श्योर दैट वी कैन क्रिएट एनॉर्मस वैल्यू विद इन इंडिया थ्रू ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट इवन अलाइड इंडस्ट्रीज।
2: बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने था अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा

0: देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Polling begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and lone Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of 8 candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the 5-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhuranthakam and Dharapuram assembly seats in Puducherry, for Thattanchavadi assembly seat and Rajinagar and Nondigram assembly seats in West Bengal. More from a Kolkata correspondent.
4: The by-election in Nandigram was necessitated after Chief Minister Shubhendu Adhikari, who won both Nandigram and Bhavanipur in the 2026 Assembly election, vacated the Nandigram seat and retained Bhavanipur. Similarly, the Rajinagar seat fell vacant after sitting MLA Humayun Kobir retained Nauda and resigned from Rajinagar. In Nandigram, 16 candidates are in the fray, including BJP's Hashirani Roth and Congress candidate Milon Pradhan. The Trinamool Congress has not fielded a candidate and is supporting Mr. Milon Pradhan. In Rajinagar, 14 candidates are contesting the elections. Among the prominent candidates are Shakar of Sarkar of the BJP, Gulab Nobi Azad of Am Janata Unnayan Party, Rabiul Alam Chaudhary of the Mamata All India Trinamool Congress and Muhammad Abdullah Kafi of the Congress. Shandipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
3: The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the names of 8 candidates for the upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Ojha, Prakash Pal, Vidyasagar Sonkar, Gopi

0: Lake Stadium, reports the Indian Express. And finally, Nobel for Medicine spotlights research on interplay between brain and light, states the Economic Times. German-US scientists win honor in medicine for using light to unravel secrets of the brain, writes the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Sarabjit. In some more news, the Indian Embassy in Bucharest has informed that all three Indian nationals aboard the commercial vessel MV Royad Mamadov are safe. The vessel came under attack in the Black Sea, leading to reported deaths of two foreign nationals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Polling begins for by-elections to five assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and lone Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of eight candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a three-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the five-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार ए आकाशवाणी खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला इस बुलेटिन दिया खास खबरां तमिलनाडु पश्चिम बंगाल विच विधानसभा दियां पांच सीटां ते असाम विच एक लोकसभा सीट लई जिमनी चोणां वास्ते वोटां पै रहियां ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो हिमाचल प्रदेश के तीन दिन दौरे पर होंगे भारत ने अफगानिस्तान की प्रभुसत्ता एकता और खेतरी अखंडता लई अपनी हमायत दोहराई हवा की गुणवत्ता के प्रबंध कमीशन CAQM ने पंजाब ते हरियाणा के 34 जिलों में झोने की पराली साड़न दट्टावों रोकण लई फ्लाइंग स्क्वैड तैनात किए ते मर्दां दे क्रिकेट विच भारत ते वेस्ट इंडीज़ विचकार 5 20-20 मैचों की लड़ी का पहला मैच अज लखनऊ विच खेडिया जाएगा ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਦੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਮਧੁਰਾਤਕਮ ਅਤੇ ਧਾਰਾਪੁਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਪੁਦੂਚੇਰੀ ਦੀ ਥੱਟਾਂ ਚਾਵੜੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰੇਜੀਨਗਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਓਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विच होने वाली राज्यसभा चोणां लई 8 उम्मीदवारां दे नावां दा ऐलान कर दिता है पार्टी दी केंद्रीय चोण कमेटी ने धर्मपाल सिंह राधाकांत ओझा प्रकाश पाल विद्या सागर सोनकर गोपी कृष्ण पांडे प्रियंका सिंह रावत राम प्रताप सिंह चौहान अते श्रुति गंगवार दे नावां नूं मंजूरी दे दित्ती है नामजदगी दाखिल करन दी अज आखरी तरीक है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अते पश्चिम बंगाल दियां राज्यसभा सीटां लई वोटिंग 16 अक्टूबर नूं होएगी इन्हां विच उत्तर प्रदेश दियां 10 अते उत्तराखंड दी 1 सीट शामिल है इस नाल ही पश्चिम बंगाल विच 1 सीट लई जिमनी चोण भी होएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते स्विट्जरलैंड दे राष्ट्रपति गी पेन्ने ने कल नवीं दिल्ली विच दुवल्ली गल्लबात कीती इस तों बाद दोवां देशां ने 5 समझौतियां ते दस्तखत कीते इह समझौते प्रवास नौजवान पेशेवरां दे वटांदरे आवाजाई विज्ञान अते तकनालोजी नवीनता ते उद्यमता वर्गे खेतरां नूं कवर करदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार ते आर्थिक पाए वाले समझौता दोवां देशां विचकार व्यापार अते निवेश नूं वधाएगा
3: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन विखे स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पैमला नाल मुलाकात की थी। उन्होंने सम्मान विच रात दे खाने की दावत।

थी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करदे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड विचकार लोकराज और कानून के शासन वर्गियां सांझियां कदर कीमतों से आधारित निघे और सुहिरद संबंध ने देशों विचकार उच्च पदरी वटांदरिया ने साढ़े दुवल्ले संबंधा नूं गति दित्ती है। इस तों इलावा राष्ट्रपति ने कहा कि स्विट्जरलैंड भारत लई व्यापार अते निवेश दा एक महत्वपूर्ण भाईवाल है। उन्होंने कहा कि इतिहासक भारत यूरोपीयन मुक्त व्यापार संघ व्यापार अते भाईवाली समझौते दे लागू होने तों बाद दवल्ले व्यापार अते निवेश दे बाजार लई होर वी वड्डे मौके ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो हिमाचल प्रदेश के तीन दिन दौरे ते होंगे। दौरे दौरान राष्ट्रपति ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल सैंसिज एम्स बिलासपुर के कन्वोकेशन समारोह में मुख मेहमान वजो शामिल होंगे अते सिख्यार्थी डॉक्टरों नूं डिग्रियां प्रदान करेंगे। तजवीजशुदा प्रोग्राम मुताबिक राष्ट्रपति अज सवेरे करीब 10:30 एम्स पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखो ते केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी इस कन्वोकेशन समारोह में शामिल होंगे। आपने दौरे के दूजे दिन राष्ट्रपति बल्कि मनाली जाएंगे। वह हिडिंबा मंदिर के दर्शन करेंगे और रोहतांग स्थित अटल सुरंग का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर बिलासपुर ते कुल्लू जिला प्रशासन वालों सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन वालों बनाए गए 2000वें एयरो इंजन की सपुर्दगी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह समागम HAL कोरापुट के करीब 6 दहाकों के योगदान उजागर करेगा। यह देश की एयरोस्पेस और रक्षा निर्माण समर्थावान मजबूत करन और हथियारबंद फौजा की संचालन तैयारी में इसके योगदान भी उजागर करेगा। रक्षा मंत्री अज विशाखापट्टनम विच हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विखे फ्लीट सपोर्ट शिप 1 लॉन्च करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 का नींह रखेंगे। वो एडवांस स्लिपवे 4 300 टन वाली गोलियत क्रेन का उद्घाटन भी करेंगे। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा xhandle@AIR भारत ने अफगानिस्तान की प्रभुसत्ता एकता खेतरी अंगठता अखंडता लई अपनी हिमायत अते अफगान लोकां दी भलाई प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। भारत ने एक गल मॉस्को विच रूस वल्लों कराए गए अफगानिस्तान ते 8वें मॉस्को फॉर्मेट सलाह मशवरे विच कही। भारतीय वफद की अगवाई रूस विच भारतीय राजदूत विनय कुमार अते जॉइंट सकत्तर डॉक्टर M सुरेश कुमार ने की थी। मीटिंग विच रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान अते उज़्बेकिस्तान दे प्रतिनिधियां ने हिस्सा लिया। अफगानिस्तान की नुमाइंदगी विदेश मंत्री अमीर खान मुतकी ने की थी। बेलारूस अते मिस्र मेहमान वजो शामिल हुए। रूसी विदेश मंत्रालय मुताबिक हिस्सा लैण वालिया ने समानता ते आपसी लाभ के आधार से काबुल नाल सहयोग वधाउण अते विश्व आर्थिकता विच अफगानिस्तान दे एकीकरण की हिमायत करन की जरूरत नूं दोहराया। रूसी विदेश मंत्री सरगे लावरोव ने कहा कि यह फोरम उन्हां देशां नूं इकट्ठा करदा है जो अफगानिस्तान नाल बराबर अते आपसी तौर ते लाभदायक भाईवाली की इच्छा रखते ने। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना 2017 विच अफगानिस्तान विच राष्ट्रीय सुलह अते शांति नूं उत्साहित करने लई कीती गई सी। पंजाब ते हरियाणा विच झोने दी पराली साड़न दी घटनावां नूं रोकण लई राष्ट्रीय राजधानी खेतर NCR अते नाल लगदे इलाकियां विच हवा दी गुणवत्ता दे प्रबंध बारे कमिशन CAQM ने इन्हां राज्यां दे 34 जिलियां विच फ्लाइंग स्क्वैड तैनात कीते ने, जदों कि तालमेल वालियां खेतर पदरी निगरानी विधियां नूं होर तेज़ कीता है। चुगिरदा जंगलात अते जलवायु तब्दीली बारे मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने की 1 तरीक तो अगले महीने की 30 तरीक तक पंजाब के 18 जिलों अते हरियाणा के 16 जिलों में फ्लाइंग स्क्वैड तैनात किए गए ने। इस विच अगे कहा गया कि फ्लाइंग स्क्वैड अपने अपने निर्धारित जिलों में जमीनी पदरी स्थिति का मुलंकण करेंगे अते संबंधित अधिकारियों नाल नेड़ो तालमेल करेंगे। टीमां किसानां, पराली सुरक्षा बल, जिला पदरी अधिकारियां, राज सरकार दे नोडल अधिकारियां, संबंधित राज प्रदूषण कंट्रोल बोर्डां दे अधिकारियां SAS नगर विखे CAQM सैल अते कमिशन नाल तालमेल करनगियां। झोने दी पराली साड़न दीआं होर घटनावां नूं रोकण लई चुके गए कदमां दे नाल नाल समेनी स्थिति दी रिपोर्ट रोजाना CAQM सैल नूं दित्ती जाएगी। मंत्रालय ने इस गल ते जोर दित्ता है कि मजबूत फील्ड पदरी विधि दा उद्देश वाढी दी रुत दौरान पराली साड़न दीआं घटनावां नाल निपटण लई जमीनी स्थिति दा समें सिर मुलंकण लागू करन वालियां एजेंसियां विचकार नजदीकी तालमेल अते तुरंत रोकथाम कारवाई नूं यकीनी बनाउणा है। भारतीय खुराक सुरक्षा ते म्यार अथॉरिटी ने राज्यां अते केंद्र

0: नवजोत जी, मैं सुनिया वसदे मेरे प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है। वो केड़ी तब्दीली है भाई?
0: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुण हो गया शनिवार नु।
1: यानी कि झांझरां दे बोर हुण शनिवार छन क्या करनगे?
0: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
1: यानी कि बुधवार दी झांझरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
0: जी।
2: विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी पीएसयू ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी बीएमसी चौंक जलंधर ते अर्बन स्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: कस्टमर केयर कितने मैडम?
4: हाँ जी।
3: केवाईसी अपडेट ले, मैंने वार वार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवा वाले निर्धारित समय पे केवाईसी अपडेट करवाना चाहिएगा।
3: पर होवेगा कि नहीं?
4: जेकर पहचान या पते विच कोई बदलाव नहीं है, तो अपने

0: जहाँ ATM या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट यानी BC को जाके या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर आही या मोबाइल बैंकिंग ऐप आही या पत्र राही उसकी डिक्लेरेशन दो।
1: अच्छा, तो जेकर को बदलाव होंदा है
0: ता फिर पहचान अते पते दा नवीनतम सबूत देके KYC अपडेट करवा सकदे हो।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना KYC अपडेट करवाउन ले अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कैंप जा बैंक शाखा पे जाओ। जानकार बनो, सचेत रहो।
2: ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ।

वायलिन वादन, पेश करता सन डॉक्टर संतोष नाहर। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस।

कर सकते हो। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो लो जी दोस्तों, साढ़े अज के इस प्रोग्राम हैलो फरमाइश के थोड़ा सब का स्वागत है जी। आया आखद खुशामदीद कहने हैं। तो राल दे राल तुहानू दस दिंदे आं असीं अपना फोन नंबर, जिसनों मिला के तुसीं साडे कोल पहुँचोगे, राबता कायम करोगे ते साडे इस प्रोग्राम दे विच अपनी पसंद नूं लै के पहुँचोगे। सो जी साडा लैंडलाइन नंबर है जी 01-8-1-23-42-173। इस नंबर नूं मिला के साडे कोल जरूर पहुँचो ते अपनी पसंद दा गीत जिहड़ा है उसदा आनंद जरूर माणो। ते इस प्रोग्राम नूं लै के हाजिर है जी एक बार फिर तुहाडी अपनी दोस्त होस्ट नीतू। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की इस गीत।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डिआइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इसके लिए विपक्षी पार्टियां देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अपमानजनक बातें कह रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और EVM को निशाना बनाती रही हैं। श्री पात्रा ने आगे कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहा सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 25 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति बोला टिनोबो ने हादसे की पुष्टि करते हुए नाइजीरियाई वायुसेना को दुर्घटना के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। और अब कुछ खेल खबरें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में आज भारत और उरुग्वे आमने सामने होंगे। मैच सॉल्ट लेक के युवा भारतीय क्रीड़ांगण में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6।

प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। तमक जलंधर पैंदी ते मैं निधि चुग लैके हाजिर हाँ तुहाड़ी फरमाइशां दी लड़ी। सानू बहुत सारे स्रोतियां ने कई वट्सएप मैसेज किए ने ते दस्या कि वह केड़ा गीत सुनना चाहते ने। तुसी भी सानू साडे वट्सएप नंबर ते मैसेज कर सकते हो। नंबर नोट कर लो 9465536077। आओ फिर वेखदे हां कि इस नंबर ते सानू पहला मैसेज किदा आया है। मैसेज आया जी जिला पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड तो शिवा गोप प्रेम गोप कपिल शिवांश संगीता लिपी ते दिवाली दीपाली गोप दा। ते अगले साथी ने पिंड शाहपुर मैतपुर तो बूटा सिंह विजयपाल सिंह अजयपाल सिंह पाहुल जोत सिंह अनाहत कौर लवप्रीत कौर परविंदर कौर हरप्रीत कौर ते गगनदीप सिंह। अगली फरमाइश आई है जी चार खंबा चौंक श्री तरन तारण साहिब तो दलजीत सिंह फटाफट हरजिंदर सोनिया रेनू टिंकू बब्बू अमनप्रीत ते अमृतपाल दी। अगले साथी ने पंचकुला तो आशु चुग अश्विनी चुग गोविंद चुग टोनी दीवान लव दीवान राधे भविक ढींगरा। कृष्णा पार्क दिल्ली तो लिखते ने सुखविंदर सिंह जौड़ा सीटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा वरिंदर शर्मा कमलेश शर्मा दीक्षा शर्मा ते रॉबिन शर्मा नाल ही वियान शर्मा ए लिखते ने जी धर्मकोट जिला मोगा तो। अगला मैसेज आया है पिंड अलवाना म्याना तहसील पायल जिला लुधियाना तो दर्शन सिंह अवतार सिंह जबरजंग सिंह चीमा महतबीर सिंह राजपूत रायपुर दा ते दतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो लिखते ने हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा ते नोखेलाल वर्मा। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर करदे हां डोली डॉली गुलेरिया दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज लैने आ जी देखते हैं कि अगला मैसेज कित्थों आया है। मैसेज आया जी खन्ना तो जगदीश सहगल राज सहगल पूजा सहगल पार्थ सहगल दा ते नाल ही अगले साथी ने जी पिंड वड़िंग खेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू पूरा सिंह गहलोत वकील सिंह चहल पिंड संतपुरा राजस्थान तो टेक सिंह सिद्धू पिंड लैपो गैरी तो गुरमीत सिंह ते पिंड बजीतपुर भोमा तो बलजीत सिंह। अगली फरमाइश आई है श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर सुखमनजीत सिंह सहजप्रीत कौर दी। अगले साथी ने जी सुभाष शर्मा सुदेश शर्मा निशान शर्मा अनुराधा शर्मा निवान ते निया शर्मा ऊना हिमाचल तो मक्खू तो लिखते ने बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी मनीष बजाज। अगला मैसेज आया है ककराली जिला पंचकुला तो वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्य एंजल नेहा अंजलि ते शुभम ते लवली दा हमी हैबोवाल तो लिखते ने जी दादरी गेट पिवानी तो कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा ते कुणाल मेहरा। अगले साथी ने जसपाल भारती वीना भारती सुरेंद्र मनदीप डिंपल युवराज हैप्पी हरप्रीत साउथ एवेन्यू अबोहर तो पिंड बनवाला हनवंता फाजिलका तो मैसेज है विनोद मायल सीमा लक्षिता यशिका माता विद्या देवी ते पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश तो लिखते ने सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर कुशल नीति शाह सुरभि अश्विन मंगलाबेन शाह ते राजेंद्र जी शाह। बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका तो मैसेज है रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा दा पिंड कातरों तो लिखते ने अमरीक सिंह औलख जसविंदर सुखमनप्रीत जशन बिंदर खेड़ी अब्दुल गफार डावर खुशनसीब अब्दुल हक डावर जियाल हक डावर ते मोहम्मद उमर डावर ए मैसेज है जी खंडवा तो भाटा बारा छत्तीसगढ़ तो लिखते ने सोहन जोशी। पटेल नगर मलोट तो मैसेज है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप आरजू जाजोरिया ते गुड्डू दा ते अगली फरमाइश है हरजीत कैंथ मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो ते नाल ही गांव टानी लाल खां नौहर तो जावेद खान अरमान खान इमरान खान सीमा बानो ते विनोद खान दी। आओ फिर इन्ना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां हंस राज हंस दी आवाज़

सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम ते सद्दाम। अगले साथी ने जी जनकपुरी सहारनपुर तो जोन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल ते विलिस डिकैस्ट्रो। करनाल तो मैसेज है गुरविंदर सिंह पांधा, इंदरजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा ते जी एस रामगढ़िया दा। पिंड खारा खेड़ा तो लिखते ने जी जिला हनुमानगढ़ संगरिया तो हरबंस सिंह, जगनदीप सिंह, गुरदीप सिंह, मलकीत कौर। खैल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कलोनी रोहतक तो लिखते ने पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का ते डुगू भाविका सिक्का। अगले साथी ने जी गुरदीप सिंह कटवाल, मीतोबाई, सुखचैन रानो, परवीन, नवीन, अनमोल, बूटा, मनीता, नवदीप, खुशदीप, निर्मल, परमजीत, गुरसेवक, गुरबख्श ते साहिबा मिर्जा, करनीखेड़ा, फाजिलका, पंजाब तो। अगले साथी ने हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया ते तमन्ना भाटिया जमशेदपुर तो। अगली फरमाइश है मनदीप सिंह दीपा दी, जलाल दीवाल, जिला लुधियाना तो, ते बठिंडा तो पिंड नथाना तो लिखते ने हरजिंदर छिंदा, न्यू माधोपुरी लुधियाना तो सुरेंद्र शर्मा, सीमा शर्मा ते प्रिंस शर्मा। कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मैसेज है मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश भट्टा दा। ते बलविंदर सरा, गुरदास, रमन, रसनदीप, मनिंदर सरा लिखते ने पिंड मोरजट सिखा हनुमानगढ़ तो। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा अगला गीत सुनते हैं जी गुरदास मान दी आवाज़ विच।

छोला बाजार बक्सर तो श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य ते परमानंद आर्य डुमराव बिहार तो डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा ते दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर तो राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी ते इकबाल मस्तान ते बक्सर बिहार तो शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी ते सुमित रमेश साहू। अगले साथी ने पिंड तमोड़ जिला लुधियाना तो बूटा बिंदर, प्रगट सिंह धालीवाल, रवि पारसो, नरिंदर बीबा, बलिंदर सिंह, बलिंदर जीत सिंह ते पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो लिखते ने मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा ते भूमिका अरोड़ा, तपा मंडी तो शमशेर सिंह हांस, सतपाल मान, चनवीर सिंह, पिंड नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ तो बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा ते आराध्या साहू। अगले साथी ने मामुलवाड़ी महाराष्ट्र तो सोपान ताइड़े, वसंत राव भोचने, पूंजा जी नहावकर ते मोहन करांगले, संतोष भाकरे, सुनैना ते सुकन्या ते सविता भाकरे लिखते ने जी शहाजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो, निखिल भाटिया, नीति भाटिया, महरीन भाटिया ब्रैम्पटन कैनेडा तो, बठिंडा तो लिखते ने इंजीनियर अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, अनमोल सिंह ते पवनीत ग्रोवर। अगली फरमाइश आई है शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा ते रुद्र वर्मा दी, भागवत वर्मा दे नाल दत्तरेगी तो, सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अक्रम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, रौनकी खान, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी ते समीना अंसारी ये लिखते ने जी पिंड गड्डी कुटाहा जिला पंचकुला तो। अगले साथी ने अलीका तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू ते रजनी, मेहम गेट नाभा तो सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी ते गुरमंत, रजक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान ते इरफान खान ये लिखते ने जी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो, मंगत राम, जगदीश रानी, संदीप मिद्दा, ममता रानी, अभिषेक मिद्दा ते दिव्या ए मैसेज है पिंड चांदमारी तो। ते अगले साथी ने रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान, बेबी गर्वी ते हिमाक्ष सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान तो, पिंड डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो लिखते ने जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर, ते गुरमीत सिंह नीता लिखते ने साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो। आओ फिर इन्ना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अखीला गीत सुनते हाँ जी सतिंदर सरताज दी आवाज़ विच। इस दे नाल ही मैनू निधि चुगनू अज दा धमक जलंधर पैंदी इत्थे ही खत्म करन दी इजाजत देना, नमस्कार।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी।

0: इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टांसावडी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्री, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: प्रोग्राम वस्ते बड़े लैके अर्चना हाजिर।
0: अर्चना का साथ देने लई मीनू भी इन्हां दे नाल है ते सारे दा की हाल चाल है। अर्चना सब तो पहले तुसी दसो ठीक ठाक हो?
1: बई हाल चाल ठीक है। ते जदों भी मीनू असी एक दूजे नूं मिलदे आ ना, इह मैं हर प्रोग्राम दे जरिए यही कहनी आ और वाकई ही सच भी है। जदों असी एक दूजे नूं मिलदे हाँ ते एक दूसरे की सुख सांद पुछदे हाँ, घर दे विच सारयां दा पुछदे हाँ, बच्चयां दा पुछदे हाँ, बजुर्गां दा पुछदे हाँ भी घर परिवार सब ठीक है, ते शायद यही चीज़ सानू सारी दुनिया दे विच सब तो वखरा करती है।
0: बिल्कुल, इंसानियत यही हुंदी है कि जे तुसी इंसान नूं किसे नूं मिले हो तां जरूर पुछना चाहिए कि

0: गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलों जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वैबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियात क्रेन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को 45,000 डेडवेट टन तक के जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा। इससे बड़े जहाजों के निर्माण की उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय

0: मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट चिंता का विषय है, क्योंकि इससे विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ पड़ा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए विमानन और तेल विपणन कंपनियों के साथ कीमतों पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों तथा महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 476 अंक बढ़कर 72,859, जबकि निफ्टी 132 अंक की वृद्धि के साथ 22,688 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों का आज सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है साडे अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा।

शाम 6:30 बजे सुनना स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम किसान वाणी। अज इस विच किसान संदेश, किसान समाचार तो इलावा सियालू सब्जियां दी खेती संबंधी डॉक्टर दिलप्रीत तलवार तो जानकारी तुसी हासिल कर सकोगे। सात बज के 10 मिनट साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनना प्रोग्राम जन सेवा से देश सेवा। सात बज के 45 मिनट सुन सकोगे संदीप चहल की अंग्रेजी वार्ता माई लव फॉर बर्ड्स। आठ बजे जन सेवा तो देश सेवा तहत आज पेश करांगे मेक इन इंडिया पहल ते खास प्रोग्राम। साढ़े 8 बजे का समा रहेगा पंजाबी खबरां दा। 8:45 सुनना समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र तो। साढ़े 9 बजे प्रोग्राम रूबरू तहत आज सुनना रंगमंच दे कलाकार जतेंद्र कौर नाल कीती मुलाकात, मुलाकाती ने सुखजीत कौर। मुख खबरां तो बाद 10:02 शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च आज तुसी जोगिंदर तखी दा क्लारनेट वादन सुन सकोगे राग भगेश्वरी च। रात 10:30 बजे दा समा होवेगा प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश दा। ग्यारह बजे सुनना हिंदी समाचार ते उस तो बाद अंग्रेजी समाचार 11:05। एसी साढ़े अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उना दा प्रसारण समा।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले दोपहर के 1:10 हो रहे हैं। आ हुण सुनदे हां प्रादेशिक खबरां।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पंजाब ते हरियाणा विच पराली साड़न दी घटनावां नूं रोकण लई राष्ट्रीय राजधानी खेतर NCR ते नाल लगते इलाकियां विच हवा दी गुणवत्ता दे प्रबंध बारे कमिशन CAQM ने इन्हां सूबियां दे 34 जिलियां विच फ्लाइंग स्क्वैड तैनात कीते ने, जदों कि तालमेल वालियां खेतर पदरी निगरानी विधियां नूं होर तेज़ कीता है। चुगिरदा जंगलात ते जलवायु तब्दीली बारे मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने की 1 तरीक तो अगले महीने की 30 तरीक तक पंजाब के 18 जिलों और हरियाणा के 16 जिलों में फ्लाइंग स्क्वैड तैनात किए गए हैं। इसने अगे कहा है कि फ्लाइंग स्क्वैड अपने अपने निर्धारित जिलों में जमीनी पदरी स्थिति का मुलंकण करेंगे और संबंधित अधिकारियों नाल नेड़े तालमेल करेंगे। टीमां किसानां, पराली सुरक्षा बल, जिला पदरी अधिकारियां, राज सरकार के नोडल अधिकारियां, संबंधित राज प्रदूषण कंट्रोल बोर्डां के अधिकारियां, SAS नगर विखे CAQM सैल और कमिशन नाल तालमेल करनगियां। पराली साड़न दियां होर घटनावां नूं रोकण लई चुके गए कदमां दे नाल नाल जमीनी स्थिति की रिपोर्ट रोजाना CAQM सैल नूं दित्ती जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज कहा है कि सरकार अपनियां लोकपक्षी नीतियां नूं निरंतर जारी रखेगी, जिन्हां विच औरतां लई मावां धीआं सत्कार योजना, घरां लई मुफ्त बिजली, किसानां नूं दिन वेले बिजली सप्लाई अते नो कैश नो फरमाइश दी पारदर्शी प्रणाली राहीं सरकारी नौकरियां देना शामिल है। सरदूलगढ़ हल्के विच लोक मंगणी प्रोग्राम दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मावां धीआं सत्कार योजना योग लाभपात्री औरतां नूं सिद्धे उन्हां दे खात्यां विच माली सहायता देण लई तैयार कीती गई है। सूबा सरकार ने हाल ही 36,87,000 औरतों 3 महीनों की 1,200

0: 5-4 करोड़ रुपए की दूजी किश्त ट्रांसफर की थी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उन्होंने सरकार ने औरतों किसानों नौजवानों और विद्यार्थियों को अपने प्रशासनिक मॉडल के केंद्र में रखा है। पंजाब सरकार ने आज 180 ईटीटी टीचर्स यूनियन दी मंगा दे हल लई सहमति प्रगटाई है। सरकार ने उन्होंने जूनियरों नाल तनखा की असमानता नूं दूर करके तनखा संबंधी चिंतावां नूं हल करन अते जायज मंगा दे निपटारे लई चल रही जांच विच तेजी लियाउण ते सिद्धांतक तौर ते सहमति जताई। खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह यकीनी बनाउण लई कि इस हल विच कोई प्रबंधकी रुकावट ना आवे, चल रही जांच रिपोर्ट बिना किसी देरी तों हासिल करन दे निर्देश जारी कीते गए ने। सिख्या विभाग हदायत की गई है कि जिवें ही जांच रिपोर्ट सौंपी जाती है उसके सिट्टियां के आधार से तुरंत कार्रवाई अमल में लियांदी जावे। यह फैसला पंजाब सिविल सकत्रेत विखे हुई एक अहम उच्च पदरी मीटिंग दौरान लिया गया, जिसकी प्रधानगी खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने, सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस, मुख सकत्र के ए पी सिन्हा, विशेष सकत्र खजाना शौकत अहमद परे और सकत्र स्कूल सिक्ख्या सोनाली गिरी नाल कीती। सूबा सरकार के मुलाजमान ते ठेकादार स्टाफ दी शिकायतों ते सेवा नाल संबंधित मामलों के हल लई पंजाब दे खजाना ते ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने, जो मुलाजमान के मामलों के हल लई गठित कैबिनेट सब कमेटी के मुखी भी ने, आज वख-वख सनअती सिखलाई संस्थावां आईटीआई दीआं मुलाजम जत्थेबंदियां ते पंजाब रोडवेज पनबस पीआरटीसी कंट्रैक्ट वर्करस यूनियन पंजाब के नुमाइंदियां नाल उच्च पदरी मीटिंगां दी प्रधानगी कीती। जथेबंदी के नुमाइंदियां नाल विस्तारपूर्ण विचार वटांदरे दौरान श्री चीमा ने ट्रांसपोर्ट विभाग के वधीक मुख सकत्र अनुराग वर्मा नूं 15 तों 75 ठेका मुलाजमां दीआं सारियां जायज मंगां दा निपटारा करन दे निर्देश दित्ते। सिख इतिहास विच विशेष स्थान रखण वाले बाबा बुड्ढा जी दी याद विच सलाना जोड़ मेला इस वार भी तरन तारण विखे श्रद्धा भगती दे उत्साह नाल मनाया जा रहा है। इतिहासक गुरुद्वारा बीड़ साहिब विखे हो रहे धार्मिक समागमां विच शामिल होण लई पंजाब दे वख-वख हिस्सियां तों इलावा दूर दुराडे दे इलाकियां तों वड्डी गिणती विच संगतां पहुंच रहीआं ने। मेले दे मद्देनज़र प्रशासन अते पुलिस वल्लों भी सुरक्षा अते आवाजाई दे प्रबंध कीते गए ने। एशियाई खेडां विच सोने दा तमगा जित्तण वाली भारतीय हॉकी टीम दे मैंबर अज सवेरे अमृतसर हवाई अड्डे ते पहुंचे, जित्थे उन्हां दा शानदार स्वागत कीता गया। उन्हां दा स्वागत उत्साही नागरिकां, खेड प्रेमियां, पंजाब हॉकी एसोसीएशन दे अधिकारियां दे नाल नाल उन्हां दे मापिआं ने ढोल दी थाल, हारां ते गुलदस्तियां नाल कीता। दो गोल करन वाले कप्तान हरमनप्रीत ने सोने दा तमगा जित्तण ते बेहद माण अते खुशी प्रगटाई। उन्हां कहा कि कोई भी खिताब जित्तना ते फिर बरकरार रखना पूरी टीम दियां सांझियां कोशिशां अते समर्पण दा नतीजा है। इस दे नाल ही प्रदेशी खबरां खत्म हुईआं। साडा एक्स हैंडल है @AIRR न्यूज जलंधर। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। हुण पेश है प्रोग्राम फौजी वीरां लई।

0: एक छोटे जे ब्रेक तो बाद।
1: मैदा टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।

0: फौजी हीरो ए प्रोग्राम जारी रहेगा। फिलहाल तुसी सुनोगे हुण तो कुछ देर बाद पंजाबी खबरां 1:40 ते फिर उस तो बाद सुन सकोगे साडे दिल्ली केंद्र तो उर्दू च खबरां 1:50 ते। ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में अमन देव। पहला चुनावी खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी समुद्री ताकत को होर वधाने लिए एक मजबूत ते एकीकृत इकोसिस्टम की लोड़ है। देहाती विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार ते आजीविका मिशन देहाती एक्ट 2025 तहत मंजूर शुदा कामों की सूची नोटिफाई की है। विरोधी पार्टियों ने वोटर सूचियों की विशेष सोध SIR प्रक्रिया में बेनियमियां ते मुख चोण कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हैं। दिल्ली के संसद मार्ग तो चोण कमिश्नर के दफ्तर तक विरोध मार्च कढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से देश में अराजकता का माहौल बनाने की योजनाबद्ध कोशिश करने का इल्जाम लाया ते भारत की महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉरमेट्स की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया है। खबर विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी समुद्री ताकत को होर वधाने और देश की रक्षा समर्था को मजबूत करने एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की लोड़ है। श्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विखे फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 की शुरुआत की। उन्होंने फ्लीट स्पोर्ट शिप 5 की नींह रखी और अपग्रेड किए स्लिपवे 4 और 300 टन समर्था वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन किया। इकट्ठ को संबोधन करदे श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 की शुरुआत फ्लीट स्पोर्ट शिप 5 का नींह पत्थर HSL विखे उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत दीआं समुद्री समर्थावां नूं मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण कदम ने। उन्होंने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट स्पोर्ट शिप 1 भारतीय समुद्री फौज की संचालन प्रभावशीलता वधाएगा। उन्होंने अगे कहा कि HSL विखे नवा स्लिपवे और गोलियत क्रेन वड्डे जहाज निर्माण प्रोजैक्टा पूरा करने शिपयार्ड की समर्था च वाधा करनगे। उन्होंने कहा कि समुद्री फौज ने मानवतावादी सहायता आफत राहत समुद्री डाकू विरोधियां कार्यों और समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने 8 दहाकों तो वध समय तो भारत दी समुद्री ते रक्षा जरूरतों पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: देहाती विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार

0: और नंदीग्राम असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा असम की नागांव लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग जारी है। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। भारत की कौमी टेलीमेडिसिन खिदमत ई संजीवनी पर टेली सलाह मशविरों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जो मुल्क भर में क्वालिटी हिफ्जान सेहत को मजीद काबिल रसाई, कम खर्च और सभी शहरियों के लिए मुसावियाना तौर पर फराहम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को फरोग देने की हुकूमत की कोशिशों में एक अहम संग मील है। इस प्लेटफॉर्म पर सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मजमू तौर पर 50 करोड़ से ज्यादा टेली सलाह मशविरे रिकॉर्ड किए गए। सेहत और खानदानी बहबूद की भारत ने बताया कि इस हुसूलयाबी से मुल्क के मौजूदा हिफ्जान सेहत निज़ाम की तकमील में टेली मेडिसिन के बढ़ते हुए रोल और ख़ास तौर पर देही, दूरदराज और कम सहूलियात वाले इलाकों में रहने वाले शहरियों को दरपेश फासले, जुग्राफियाई और रसाई में दरपेश रुकावटों पर काबू पाने में कामयाबी की अक्कासी होती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से अपील की है कि वो इस शोबे में खिदमत और हमदर्दी के जज्बे से काम करें। आज हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बिलासपुर के पहले जलसाए तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि डॉक्टरों को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जिससे इदारे के वक़ार में इजाफा हो और आइंदा नस्लें उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तहरीक हासिल करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को अक्सर खुदा का नुमाइंदा तसव्वुर किया जाता है और इसलिए खिदमत खल्क उनका अव्वलीन मकसद होना चाहिए। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि डॉक्टरों का हमदर्दी से पुर रवैया मरीजों की काफी मदद कर सकता है।
1: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संस्कृत एक सुनहरी डोर है जो सभी भारतीय जबानों को बाहम मरबूत करती है। आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री कौमी संस्कृत यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के दूसरे सालाना जलसे से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि हर भारतीय जबान एक अजीम जबान है और इन जबानों से मुल्क की सकाफत में गिना कदर तआवुन हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दीगर जबानों के अलावा संस्कृत को फरोग देने के लिए भी बहुत से इकदामात किए हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से भारत के इल्मी निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इस विजन को मजीद तकवियत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इससे यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों की हौसला अफजाई होती है कि वो भारत के इस इल्मी निज़ाम को अपने प्रोग्रामों में शामिल करें। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि संस्कृत का मकाम साइंस, अदब और फलसफे की दुनिया में शानदार हैसियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी ने आज ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी की नुक्ताचीनी की है कि अपोजिशन पार्टियां, बिलखसूस कांग्रेस, मुल्क में लाकानूनियत का माहौल पैदा करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से इकदाम कर रही हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां मुल्क के आईनी इदारों के खिलाफ मनसूबाबंद तरीके से इहानत आमेज बयान दे रही हैं।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: जल शक्ति के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने आज कहा है कि भारत ने पानी के तहफ्फुज़ के सिलसिले में जो कोशिशें की हैं वो इस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी कोशिशों में से एक हैं। इनसे जनभागीदारी और इमदाद बाहमी पर मबनी विफाखियत को मजबूत बनाने की अक्कासी होती है। नई दिल्ली में पानी से मुतालिक इख्तरा की एक सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत वाली रियासतों में मुख्तलिफ देही तरक्याती इकदाम किए गए हैं। अपोजिशन पार्टियों ने आज पार्लियामेंट हाउस से निर्वाचन सदन तक एक एहतजाजी मार्च किया, जो भारत के इंतखाबी कमीशन का सदर दफ्तर है। ये मार्च खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के अमल में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ और आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बरतरफ करने के मुतालबे के तहत किया गया।

फौजी विरोह प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर है एसपी बाला सुब्रमण्यम ते के एस चित्रा दी आवाज विच। फिल्म का नाम है लव।

0: ਹੋ ਜੀ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਧੀ ਚੁਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
1: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर।
1: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

0: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों धारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और धारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु बेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
2: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
4: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है। हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
2: अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIR News Hindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश की सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
6: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है।

0: यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
2: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदलिए और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
3: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
3: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट CJI द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। CJI ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने

0: बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हूती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हूतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदेदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हूतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
5: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलियां जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे औहदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
6: ਵੇ ਮਨੂ, ਤੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
3: ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
6: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, HIV ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
3: HIV
6: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ, HIV ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਿਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਏਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
7: ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। आओ हुण सुणदे हां प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी मदन लाल चंचल ते उहनां दे साथियां दीआं गाईआं माता दीआं भेटां सुणोगे।

नमस्कार, तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लैके मैं तुहाडा दोस्त ते आरजे तजिंदर सिंह हाजिर हाँ। इस प्रोग्राम च असी तुहाडे वल्लों भेजियां जांदियां प्यार भरियां चिट्ठियां नूं प्रोग्राम च शामिल करदे होए तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं पूरा करदे हां। दोस्तो, अज 6 अक्तूबर दा दिन मरहूम प्रसिद्ध भारतीय अदाकार, निर्माता ते सियासी आगू विनोद खन्ना दा जन्मदिन है। दोस्तो, इन्हां ने

हरभजन मान की आवाज़ में तुसी सुन रहे थे खूबसूरत गीत तीन रंग नहीं लभने बीबा। बिल्कुल दोस्तों, हुसन जवानी ते मापे बार बार नहीं मिलने, ना तिना की कदर करनी चाहिए है। प्रोग्राम की अगली फरमाइश लिए सानू चिट्ठियां भेजने वाले ने जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया ते पप्पी भाटिया। गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक ते मीका बिरक। महस गेट नाभा तो सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी ते गुरमन्नत। पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो बाबा त्रिलोक सिंह, शिवजोत सिंह गिदड़बाह, गुरसिमरन, नवप्रीत, राजदीप, रहमत, नवनीत, दोस्त बलतेज कुड़ियाना ते भोला सवाग। पिंड अमीर शाह वाला जिला फिरोजपुर तो मुख्तियार सिंह वरवाल ते होर बहुत सारे दोस्त मित्र। इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे आं प्रोग्राम दा अगला गीत।

दोस्तों तुसीं सुन रहे सीगे बब्बू मान की आवाज़ विच खूबसूरत गीत मेरे दिल विच तेरा घर होवे। दोस्तों प्रोग्राम की अगली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजण वाले ने मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा इंदरजीत कौर बेबी मनमीत ते मनविंदर सिंह पांधा पिंड कुड़ियाणा तो कुलदीप धींगड़ा सुमित धींगड़ा विशाल बलतेज बूटा सिंह बटू रूड सिंह पेंटर बलतेज सिंह ते होर उन्हां दे परिवारक मैंबर मलोट तो जगतार गिल परमजीत कौर गिल गैवी गिल अमनदीप गिल खाने की ढाब तो शमशेर कोलतर बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू अविताज सिद्धू धौला किंगरा तो जगतार जग्गा पिंड आजमवाला तहसील फाजिलका तो सोहन सिंह बुग निशान सिंह बुग सीरत कौर कीरत कौर ते जसवंत कौर राज मिस्त्री पिंड मारूवाणा बोधला ढाणी नेड़े खाना अरनी वाला तो सुरेंद्र कौर बूक बलविंदर कौर बूक बलते बलदेव सिंह चक कंधे शाह पिंडी तो अमन लाल पोस्टमैन। दोस्तों इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे आं प्रोग्राम दा अगला गीत।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले शाम दे 4:30 वज रहे ने। आओ हुण असी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करदे हां।

वडे किया वड्याईया, किछ कहना कहन न जाई, सो करता कादर करीम, दे जिया रिजक संभाहे। कथन अनुसार प्रभु सिरजनहार दे गुण बयान नहीं किते जा सकते, ते संसारी जीवां दे अवगुणां दा कोई अंत नहीं है। समझ ही नहीं आउंदी कि इस बेअंत संसार रचना अंदर जीवां दी मां अते प्यो कौन ने ते कित्थों आए। माता दी उदर अग्नि अते पिता दे बिंब विचों उपजिया जीव किस मकसद लई रचया गया। इस सारी रचना दे रचायता दी अजीब ही सोच है अते मौज है। इस मनुखी जामे तो पहला रुखां बिरखां पशुआं दियां जोनियां भी उसे दी उपज है। कदे सप्पां कदे पंखियां दी जून। कुकर्म करन वाले जीव तंदियां विच गलतान ने। इना सबना नू आप प्रभु ही देख रहा है, उस तो कोई ओला नहीं। तीर्थां दे कंडे खंड ब्रह्मांड ए सब कुछ दृष्टमान है। जेकर व्यापारी दी न्याई लेखा जोखा किता जाए तां इस वणज दा वणजारा दिल विच ही महसूस कर रहा है। गल की जिन्ना सागर विच नीर है उतने ही औगणा नाल भरिया होया साडा मन है। हे प्रभु, आप ही दया करके कृपा करो ते इस डुबदे हुए पत्थर नू तारो। मेरा हिरदा विकारां दी अग्नि नाल तप रहा है ते मेरे अंदर तृष्णा रूपी फट पाउण वाली कटार चल रही है। पर निम्रता सहित बेनती है कि जिहड़ा मनुख रब्बी रजा नू पछाण लैंदा है उस दे अंदर हर वक्त आत्मिक आनंद बनिया रहिंदा है। राग गौड़ी चेती विच बाबा नानक जी का फरमान है, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। सरवण करदे हां भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ये शब्द।

मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। इस शब्द का गायन किया भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। सच्चे गुरु की उस्तत करन लई जीव की बुद्धि तुच्छ प्रतीत हुंदी है, उस तों तां बलिहारे ही जाया जा सकता है। सोरठ राग विच उचारित शब्द विच पंचम गुरदेव फरमान करदे ने कि मैनू वड्डे भागा नाल पूरा सच्चा गुरु मिल गया है ते मेरा मन रोशन हो गया है। उस वर्गा होर कोई नहीं है, इस करके मैनू तां उसे ते ही भरोसा है। मैं अपने सच्चे गुरु तों वारने हाँ, जिस दे मिलाप सदका मैनू लोक परलोक दे सुख अते आत्मिक आनंद दी प्राप्ति हुई है। करण करावण हार स्वामी घट घट की जानन वाला है, प्रभु ही मेरा साई है। उसकी चरण शरण प्राप्त करके निर्भयता प्राप्त हो गई है ते उसका नाम ही जीवन का आधार है। काल के प्रभाव तो मुक्त प्रभु के दर्शन ही सकारार्थ हैं। जो प्रभु अज भी है, पहला भी सी ते भविख विच भी होएगा, उही अपनी प्रीत दे रंगा विच रंग के अपने प्यारे जना नू गल नाल लाई रखदा है। उस वड्डे प्रभु दियां वड्याईयां भी अणगिणत हन अते शोभा भी हैरान कर देण वाली है। उसे ने

ही मेरे सारे कारज रस कर दते हैं। ऐसे पूरन गुरु दा मिलाप मैनु प्राप्त हो गया है। इस प्रीत मिलनी सदका मेरे सारे दुख बिनस गए हैं। अपने सतगुर कै बलिहारै आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारै। सरवण करदे हां इस शब्द दा कीर्तन भाई हरजिंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे पासों।

0: सतगुर कै बलिहारै, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारै। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई हरजिंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आं इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: ए पावन शब्द धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा उचारण कीता होया राग सोरठ विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 609 उपर सुवायमान है। इस पवित्र शब्द दी विचार इस प्रकार है। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज असां संसारी जीवां नूं समझाउंदे हन कि मैनूं वड्डी किस्मत नाल कामल भाव पूरा गुरु मिल गया है। सतगुरु जी दे मिलाप दी बरकत नाल मेरे मन विच आत्मक जीवन जीवन दी सोझी पैदा हो गई है। मैनूं हुण अपने मालक प्रभु जी दा सहारा मिल गया है। जिस सब दे मालक प्रभु जी दी कोई भी जीव बराबरी नहीं कर सकता। इस परथाए शब्द दे आरंभ दे बचन सतगुरु अलाउंदे हन। गुर पूरा भेटियो वडभागी मने भया परगासा कोई न पहुँचण हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। कल सहार पठ धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी की उस्तत करदे हां बचन करदे हन कि धन गुरु अंगद देव जी जिस मनुख उत्ते अपनी कृपा दृष्टि करदे हन उसनू आत्मक जीवन जीवन दा सलीका बख्शदे हन। उस दे सारे पाप ते पापां दी सारी मैल दूर कर देंदे हन अते काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये सारे उस दे काबू विच कर देंदे हन। गुरु अंगद देव जी दे मन विच सदा आत्मक सुख वस रहा है जिस दे कारण गुरु संसार दा दुख दूर करदा है। गुरु नौ निधियां दा दरियाओ है। गुरु असां संसारी जीवां दे जन्मां जन्मां दे माड़े कर्मां दी मैल कालख धो देंदा। ऐसे गुरु अंगद देव जी नूं दिन रात आत्मक अडोलता अते प्रेम विच टिक के सेवना चाहिदा है। ऐसे सतगुरु दा दर्शन कीतेयां जन्म मरण दा दुख कटिया जांदा। पट जी इस प्रथाए बचन करदे हन अमै दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै गुर नाम निदरियाओ जन्म हम कालख तोवै सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाए। विचार अधीन शब्द विच धन गुरु अर्जन देव जी फुरमाउंदे हन कि मैं अपने ऐसे गुरु जी तो कुर्बान जांदा हाँ जिस पूरे गुरु जी की कृपा नाल मेरे हिरदे रूपी घर विच आत्मक आनंद बनिया रहिंदा है। इस लोक विच भी आत्मक अडोलता दा सुख मैनू प्राप्त हो गया है अते परलोक विच भी ए आत्मक आनंद बनिया रहण वाला है। अपने सतगुर कै बलहारै आगै सुख पाछै सुख सहजा कर आनंद हमारै रहो। विचार अधीन शब्द विच गुरु पंजवें पातशाह बचन करदे हन कि ओ परमात्मा परमेश्वर ऊपर मैनू निश्चा हो गया है जो सारी सृष्टि का सिरजनहार है सब जीवां दे दिलां दी जानण वाला अंतरजामी है। ओही परमात्मा

0: मेरे सिर उत्ते राखा है। जदों तो मैं सतगुरु की शरण पै के गुरु जी की चरणी लगा हाँ, उदों तो मैनू प्रभु जी दे नाम का आसरा मिल गया है। परमेशर दे नाम का आसरा मिल जाने की बरकत नाल हुण मैनू कोई किसी भी किस्म का डर नहीं सताउंदा। गुरुदेव शब्द दे दूजे पद विच बचन उचारण करदे हन, अंतर जामी करना हारा सोई खसम हमारा, निरभउ पए गुरचरनी लागे इक राम नाम आधारा। गुरु जी की कृपा नाल मैनू उस अकाल पुरख पार ब्रह्म परमेशर ते ऐसा यकीन बन गया है जिस पार ब्रह्म परमेशर दा दर्शन मनुखा जन्म दा फल देन वाला है, जिस प्रभु दी परम हस्ती मौत तो रहत है। ओ परमात्मा इस समय भी मेरे सिर उत्ते मौजूद है अते सदा ही कायम रहन वाला है। ओ प्रभु जिन्ना सेवकां ते नदरे कर्म करदा है उन्हां नूं अपनी प्रीत दी दात, अपने प्यार दी दात दे के अपने प्यारे सेवकां नूं अपने गल नाल ला के रखदा है। गुरवाक है सफल दर्शन, अकाल मूरत प्रभ है पी होवन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। मेरे गुरु दी वडियाई बहुत महान है, मेरा सतगुरु बड़ी वड्डी वडियाई वाला है, उस दी शोभा भी बड़ी अचरज है। वो अचरज शोभा वाला है, उस दी शरण पैन नाल मनुखा जिंदगी दा असल मनोरथ प्राप्त हो जाता है। मैनू नानक नूं पूरा गुरु मिल पिया है, पूरे गुरु जी दे मिलाप दी बरकत नाल मेरे सारे दुख दूर हो गए हन। इस पर थाए गुरवाक है वड्डी वड्याई आचरज शोभा कारज आया रासे, नानक को गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे।
1: अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी जसबीर सिंह। परमेश्वर प्रभु तो बलिहारे जाण दी बात साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी सोरठ राग विच उचारित शब्द विच करदे ने कि मेरी सोहणे लाल प्रभु नाल प्रीत स्थापित हो गई है। इस प्रीत दी डोरी प्रभु दे हथ विच इस कदर है कि ए प्रीत धागा ना तोड़िया टुटदा है ते ना ही हथों छुटदा है। दिन रात हर वक्त मेरे मन विच वसण वाले प्रभु तू मेरे ते अपनी मेहर करी। मैं तां उस सांवल सुंदर प्रभु दी अकै वड्याई सुन के उस तों वारने बलिहारने जानी आ। हे प्रभु मैं तेरे दासां दा दास अखवाउंदा होया बेनती करदा हाँ कि हे ठाकुर प्रभु मेरे ते इंज ही कृपा करदे रहो, क्योंकि मेरी तहे लालन प्रभु तेरे नाल ही प्रीत बन गई है। मूह लालन स्यो प्रीत बनी, तोरी ना टूटै छोरी ना छूटै ऐसी माधो खिंच तनी। इस शब्द का गायन कीता है आशा भोंसले अते लता मंगेशकर होरा ने।

लालन स्यों प्रीत बनी, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी। इस शब्द का गायन कीता सी आशा भोंसले अते लता मंगेशकर होरा ने।

0: ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
1: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਕਸੌਲੀ ਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:49 ਤੇ 50 seconds ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
3: देश में जिस तरह से GDP बढ़ रही है 7%-8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए PM गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।

0: वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की जरूरत है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में उनका उपचार किया जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले फौरन रोकने की भी अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
1: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आओ हुण जानदे आं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश कीता जाएगा किसान वाणी। आज दे इस प्रोग्राम दे विच सिलसिले होंगे किसान संदेश, किसान समाचार ते सियालू सब्जियां दी खेती बारे जानकारी देंगे डॉक्टर दिलप्रीत तलवाड़। शाम 7:10 ते दिल्ली केंद्र तो प्रोग्राम प्रसारित कीता जाएगा जन सेवा से देश सेवा। शाम 7:45 ते तुसी सुनोगे अंग्रेजी वार्ता माई लव फॉर बर्ड्स। वार्ताकार होंगे संदीप चाहल। रात 8:10 ते विशेष प्रोग्राम पेश किया जाएगा जन सेवा तो देश सेवा। रात 9:15 प्रोग्राम आएगा स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तो।

रात 9:30 प्रोग्राम रूबरू तहत रंगमंच ते फिल्मा दे कलाकार जतिंदर कौर दे नाल कीती मुलाकात सुनाई जाएगी। एना दे नाल मुलाकात करनगे सुखजीत कौर। रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम होएगा सुर साधना। आज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे जोगिंदर तखी दा क्लारनेर ते वजाया राग बगेश्वरी। रात 10:30 फोन इन ते व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम पेश कीता जाएगा। तुहाडी फरमाइश। सो ऐसी अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समा। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है देशभक्ति समूह गाना।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण अज तो 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो देशभक्ति समूह गान।

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल और जानकारी ले सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करो।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। भारतीय खुराक सुरक्षा ते म्यार अथॉरिटी ने राजा ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं आउण वाले त्योहारां दौरान मिलावटी ते असुरक्षित भोजन विरुद्ध विशेष मुहिमां शुरू करन लई कहा है। पंजाब दे जल सप्लाई मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने 267 करोड़ रुपए

0: मिल सकता है। किसान लई प्रीमियम दी दर भी सीमित रखी गई है। खरीफ फसलां लई किसान दा वध तों वध हिस्सा 2% रबी फसलां लई 1.5% जदकि सालाना व्यापारक ते बागबानी फसलां लई 5% तक है। किसान वीरो, फसल बीमा करवाउंदे समय अपने खेतर विच अधिसूचित फसल बीमे दी रकम ते आखरी मिति दी जानकारी जरूर लवो। जे फसल नूं नुकसान हो जावे तां निर्धारित प्रक्रिया अनुसार तुरंत सूचना देना बहुत ही जरूरी है। फसल बीमे नाल संबंधित जानकारी, नुकसान दी रिपोर्ट जां फिर सहायता लई कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 ते संपर्क कीता जा सकता है। असी हेल्पलाइन एक बार फिर दसते हैं, 14447 ते संपर्क किया जा सकता है। तो किसानों को यह भी सलाह है कि बीमा करवाने समय अपना नाम, मोबाइल नंबर, जमीन, फसल ते बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज करवाउण, तां बीमे नाल संबंधित रसीद जां दस्तावेज संभाल के रखण। याद रखो, फसल बीमा किसान लई कुदरती जोखम दे समय एक वित्तीय सहारा है, इसलिए समय सिर जानकारी लवो। योग होण ते फसल दी बीमा करवाओ ते नुकसान होण तो तुरंत सूचना दिओ। ते होर जानकारी लई अधिकारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल या फिर अपने जिले दे खेतीबाड़ी विभाग नाल संपर्क किया जा सकता है। इस नाल ही किसान वाणी दा ये प्रोग्राम हुण खत्म हुंदा है। आग्या चाहांगे, जय हिंद, जय किसान। प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित।
2: अते 60 साल की उम्र वालों नूं 3,000 रुपए महीने की पेंशन होएगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकते ने 18 तो 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना विच सरकार देगी बराबर दा योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना दे लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
2: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज कराण।
1: अन्नदाता दी मेहनत नूं समर्पित पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे आं पंजाबी गीत ज्योतिका टांगरी दी आवाज च।
1: कुड़े मैनू भी आपका गीत सुना दिओ।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: कल्पना कीजिए, साल 2001 का कच्छ, चारों तरफ धूल, मलबे का ढेर और अपनों को खोने का सन्नाटा। उसी राह के ढेर से जब एक नए नेतृत्व ने जन्म लिया तो उसने कंक्रीट के पत्थरों में केवल इमारतें नहीं बल्कि भारत का आत्मविश्वास चुनना शुरू कर दिया। समय बदला, पन्ने पलटे और कच्छ के मलबे से उठा वही संकल्प जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचा तो नए भारत की नई सौगात दिखने लगी। गुजरात के स्वर्णिम संकुल के प्रशासनिक कमरों से शुरू हुई ये सोच आज नर्मदा के तट पर 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर बादलों को छू रही है। वैश्विक आर्थिक मंचों पर भारत की ढाक जमाने वाला भारत मंडपम और यशो भूमि के झिलमिलाते कांच में आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक और स्मृति वन से अपनी साहसिक, सांस्कृतिक और संवेदना की जड़ों को सींचा गया है तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट और कैंपागोड़ा T2 तक बिछते नए रनवे कह रहे हैं ये नया भारत है जो अब किसी की ओर देखता नहीं, दुनिया को राह दिखाता है। और यही वो एहसास जगाता है जो नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम चर्चा करेंगे नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर। और इस विकास गाथा के पन्नों को एक एक कर खोलने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर केजी सुरेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और शिक्षाविद, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार।

0: मदन जेड़ा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: धन्यवाद
0: सुरेश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारत की सार्वजनिक पहचान की बात करते हैं तो बीते एक दशक के दो बड़े स्तंभ यशोभूमि और भारत मंडपम, चाहे G20 का आयोजन हो, ब्रिक्स का आयोजन हो, AI समिट का आयोजन हो, G20 में हमने देखा यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर बना है, एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, कई तरह के एक्सपो एग्जीबिशन वहां लगे होते हैं। आपसे मैं जो समझना चाह रहा हूं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है, जो नई तरह की संस्कृति डेवलप हो रही है, उससे भारत को वैश्विक पहचान बनाने में कैसे मदद मिल रही है?
1: बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की एक पहचान जो रही है वो एक औपनिवेशिकतावादी एक पहचान रही है। कोई भी अगर पर्यटक भी आता है तो वो इंडिया गेट जाएगा, राष्ट्रपति भवन जाएगा या लाल किला, जो आप देखेंगे कि मुगल कालीन है। भारत कहाँ है, भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ है, अक्सर कई लोग पूछते हैं कि इसमें भारतीय कहाँ है। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो गया था कि हमारी अपनी पहचान, आज हम एक उभरते हुए विश्व शक्ति है, एक विकासशील देश है, जिसके बारे में 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। आज वैश्विक मंच पर हमारा नेतृत्व है, चाहे वो G20 का रहा हो जिसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम का दे दिया था, या ब्रिक्स का नेतृत्व रहा। ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधिमंडल, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष जब वे आएंगे, तो उनको आधुनिक भारत की छवि, जिसमें आधुनिक भारत तो है ही लेकिन साथ में एक प्राचीन सभ्यता की झलक भी मिले, ऐसे क्या सभागार हो सकते हैं क्या, ऐसा क्या जगह हम बना सकते हैं क्या? देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि काफी वर्षों तक नैम समिट मुझे याद है, छोगम मुझे याद है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये सब हुआ था विज्ञान भवन में। लेकिन विज्ञान भवन का एक समय आज के जो आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जबकि उसको अपग्रेड भी किया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो है उसमें कई कमियां दिख रही थी। तो ऐसे में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में, आज भारत मंडपम हो या यशोभूमि हो, आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व में लोग एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि भारत के पास भी एक ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। और मैंने कई विदेशियों का ब्लॉग देखा है जिसमें, या वीडियो ब्लॉग्स देखते हैं उनमें, जिसमें ये दिखाते हैं कि क्या आप ये देख रहे हैं, ये क्या भारत में हो सकता है क्या। मैं पड़ोसी मुल्क में लोग जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, वो फोटो दिखाते हैं वहां के नागरिकों को, वो पूछते हैं ये किधर का होगा, तो कोई सिंगापुर कहता है, कोई हांगकांग कहता है, फिर वो यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं ये भारत में है। तो यानी कि इससे भारत की जो छवि उभर कर आई है, पूरे विश्व में स्थापित हुई है। और साथ साथ मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके का अर्थव्यवस्था में आज हमारा GDP विश्व में सबसे अग्रिम पंक्ति में हम खड़े हुए हैं, जिस तरीके से आज विदेशी निवेश भारत में हो रहा है, जिस तरीके से जो है वहां के पूंजी निवेश यहां कर रहे हैं, निवेशक यहां आ रहे हैं, उनको भी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहां प्रदर्शनियां करें, बैठकें करें, सम्मेलन करें, संगोष्ठियां करें। तो मैं समझता हूं कि ये दो जिनका आपने जिक्र किया है, ये हमें बहुत गौरवान्वित करती है। और साथ ही साथ जो नवीनतम जो प्रौद्योगिकी है उसका उसमें जो है हमने समाहित किया है, जिससे आज विश्व स्तर में जब बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स की जिक्र होती है तो उसमें जो है इन दोनों का नाम भी शुमार।
0: मदन जी, अगर इतिहास के पन्ने को थोड़ा पीछे पलटे, चूंकि हम प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत गुजरात से हुई, वहां महात्मा मंदिर का निर्माण हो, स्वर्णिम संकुल हो, या फिर कच्छ के भूकंप के बाद जो स्मृति वन बना और फिर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की नर्मदा के तट पर, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। तो जब शुरुआत गुजरात के इन बड़े और भव्य इमारतों के साथ हुई तो सोच बदलने लगी थी। उस सोच को बदलने की कहानी आपसे समझेंगे, चूंकि 2001 से के अगले 10 वर्षों में ये सब कुछ होने लगा था, घटित होने लगा था, कैसे देखते हैं उस फेज को, चूंकि नए भारत की नींव उस समय बननी शुरू हो गई थी।
2: देखिए, आपने गुजरात का जिक्र किया, उससे पहले मैं एक रोचक इंसिडेंट बताऊंगा। ये करीब 2018-19 की बात होगी, मैं कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, स्पेन गया था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल देखा तो मुझे, मेरे दिमाग में पहली बात यह आई कि ऐसे हॉल, ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे देश में क्यों नहीं है। ये बात तब तक है, तब तक मैं गुजरात नहीं गया था। स्पेशली मैं जो गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया वो मैंने नहीं देखा था। उसके 6 महीने बाद ही मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और तो मैं देख के दंग रह गया कि हमारे देश में ऐसा हॉल पहले से मौजूद है। जब मैंने

0: महात्मा मंदिर देखा और उसका जो स्टाइल देखा, जिस प्रकार से वहां पर सारे सिस्टमेटिक हैं, वही चीजें भारत मंडपम में और यशोभूमि में भी है। विज्ञान भवन में वो चीजें नहीं है, विज्ञान भवन बहुत पहले का बना था और एक सीमित कैपेसिटी का हॉल था, और हमारे पास तब ले देखे दिल्ली में विज्ञान भवन ही हुआ करता था और सारी कॉन्फ्रेंस उसी में सीमित होती थी। और अगर मुझे ये भी याद है कि एक 2006-07 के आसपास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूसा में हुई थी, और वहां पर क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और हमारे पास कोई हॉल नहीं था और विज्ञान भवन से काम नहीं चल रहा था या वहां पर कोई बिजी था, तो बाहर टेंट लगाया गया था, एक बहुत बड़ा टेंट जैसे पब्लिक रैलियों में लगाया जाता है, पॉलिटिकल रैलियों में लगाया, उस तरह का एक टेंट लगाया गया था। तो जब 2019 या 20 में मैं दोबारा महात्मा मंदिर में गया और मैंने वहां देखा कि मैंने कहा इतना शानदार हॉल गुजरात में बन सकता है और उससे 4-5 साल पहले वो बन चुका था, तो ऐसे हॉल दिल्ली में क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें चलते रही, दिल्ली में बनी, यशोभूमि तैयार हुआ और G20 का हमने सफल आयोजन देखा, 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ पहल है और एक ये सोच जो थी कि भारत एक विकासशील देश है या एक गरीब देश है, एक सोच बनी रहती, जब भी कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है वो लगता था कि भारत भाई एक विकासशील देश है या गरीब है। भारत एक विकासशील देश जरूर है, लेकिन वो एक विकसित देशों की ओर बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और उसकी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बात अभी सर ने बोली, तो जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लक्ष्य हमने रखा है 2047 तक, वो हम पारित वो तक हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो उसी की दिशा में, उस दिशा में ये जो चाहे वो महात्मा मंदिर हो, चाहे वो यशोभूमि हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो जिसका अभी निर्माण हाल ही में हुआ है, और सेंट्रल विस्टा का तेजी से विस्तार हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने जो एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसको काम करने के लिए जब तक हम बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे और उसको हम एक वर्ल्ड क्लास का नहीं बनाएंगे और उसको मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी जरूरतें हों, चाहे वो फायर सेफ्टी की जरूरतें हों, चाहे वो एक ह्यूज कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत हो, जब तक हम उस हिसाब से नहीं बनाएंगे तब तक हम जो अपने लक्ष्य हैं, जो अपने बड़े लक्ष्य हैं, तो उसमें भी शामिल कैसे होंगे। अगर सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत अच्छी तरक्की करे, तो मुझे उसे बेसिक संसाधन, बेसिक सुविधाएं उसे देनी पड़ेंगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे उसे कपड़े देने होंगे, अच्छे जूता पहनाना होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझें कि सड़क और एयरपोर्ट, ऑफिस भी अच्छा होना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होना चाहिए, अच्छी पार्लियामेंट भी होना चाहिए, एक सरकारी दफ्तर है तो वहां पर हमारा फास्ट इंटरनेट भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये हम लगातार देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कई चीजें बेहतर होंगी।
1: जी सुरेश जी, हमने यशोभूमि का जिक्र किया, हमने गुजरात के कुछ संस्थानों का जिक्र किया, 3 और ऐसे ही पृष्ठभूमियां हैं, कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। इसमें जो खास रहा, राज से कर्तव्य की ओर बढ़ना और सत्ता से सेवा की भाषा को बदलना, कैसे देखते हैं आम जनमानस के नजरिए से और इसे प्रशासनिक सुधारों के भी नजरिए से, जो राज था वो कर्तव्य बन गया, जो सत्ता था वो सेवा की भाषा बन।
2: बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब पहले पदभार संभाला 2014 में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक, वहीं से ये यात्रा शुरू होती है। तो अपने आप को सत्ता का अहंकार के जगह सत्ता में जो विनम्रता आनी चाहिए कि सत्ता जो है वो लक्ष्य नहीं है, वह एक माध्यम है, सेवा का माध्यम, वह जो है एक साधना है जिसके माध्यम से हम दीनदयाल जी का जो अंत्योदय की जो बात कही थी या गांधी जी ने दरिद्र नारायण की जो बात कही थी, उनको वहां से उठाकर उनको जो है एक विकसित भारत में, जहां विकसित भारत सिर्फ अधोसंरचना नहीं है, वहां हर व्यक्ति को अपना जो है जो हक है उसका अधिकार है वह प्राप्त होगा और सही मायने में हम स्वतंत्र होंगे। याद रखिए, हम स्वाधीन जरूर बने 1947 में, लेकिन स्वतंत्र, हमारा अपना, हमारे सड़कों का नाम विदेशियों के नाम पर होता था, हमारे भवन जो है विदेशियों का बनाया हुआ था, हमारा अपना क्या। स्वाधीनता से स्वतंत्रता की जो यात्रा है, और खासकर अमृतकाल में जो हमने 1947 से लेकर 2022 तक जो हमने जो 75 वर्ष और अमृत महोत्सव बनाया, और वहां से शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है, वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसमें यह बहुत आवश्यक है कि हमारा जो है न सिर्फ हमारे अधिकारों की बात हो, साथ साथ हमारे दायित्व बोध भी हमें, ये बहुत आवश्यक है। एक नागरिक को दायित्व बोध, और नागरिक कोई नहीं, सत्ता में जो बैठा है उसको भी। इसलिए राजपथ जो है कर्तव्य पथ बना, कि कर्तव्य पर जोर है, हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहे हैं हमेशा, तो राइट सेंट्रिक जो एक आख्यान रहा है उससे हटकर हम जो है दायित्व बोध पर केंद्रित, हर नागरिक अपना योगदान दे, और उस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी सेवा

0: तीर्थ अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखते हैं, क्योंकि ये सेवा का जो है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सारा नीति निर्धारण होता है, तो अगर वही सेवा तीर्थ हो गया तो आप समझिए कि क्या संदेश नीचे तक पूरे प्रशासन कि हम यहाँ सत्ता भोगने नहीं आए, सत्ता को सेवा का एक माध्यम बनाकर हम आए। तो इसलिए हम सेवा तीर्थ में भी वही संकल्प को हम देखते हैं, परिलक्षित होते हुए देखते हैं, हम उसी संकल्प को हम देखते हैं जब आप कर्तव्य भवन जो देखें। अब आप कर्तव्य भवन को देखिए, उनका निर्माण देखिए, आधुनिक सारी सुविधाएं, लेकिन भारतीय विरासत और विकास दोनों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखता है। जगह का कितना सदुपयोग हुआ है और उनमें इतनी ऊर्जा है, वो इकोनॉमिकली ही नहीं, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के दृष्टि से भी उसमें कई, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर हो, उसमें कई व्यवस्थाएं की गई है ताकि वो विश्व के आधुनिक भवनों में से उनकी गिनती होती है, जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से आधुनिक इंटरनेट और नेटवर्क और सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। लेकिन साथ ही साथ जो है उसमें आप देखेंगे, मुझे कहते हुए ये है कि अफसरों के कमरे जो बड़े बड़े होते थे, आज उतना ही समय जो फंक्शनल जिसको कहते हैं कि आपको कमरे की आवश्यकता है, कमरा है जहां से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उतना ही पब्लिक को बैठने की जगह, जहां लोग मिलने जाते हैं उनको बैठने की जगह, बाकी जो जन सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध किया गया है, बहुत सोच समझ कर एक जनता को केंद्र में रखकर इन भवनों का निर्माण किया गया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन सब के मध्य में जो है वह अंत्योदय में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वह लोक दरिद्र नारायण है, जिसके सेवा के संकल्प को प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का प्रयास किया है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने पर विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में ये विशेष एपिसोड। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर, और हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हैं, प्रोफेसर केजी सुरेश और मदन जेड़ा जी। मदन जी, ये सब कहानियां भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में की जा रही हैं, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संपर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। एविएशन सेक्टर और क्षेत्रीय संपर्क की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु का केम्पागोड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गुवाहाटी का नया टर्मिनल और आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी लोकप्रिय है, ये तीन अलग अलग रणनीतियों को दर्शा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर हब के रूप में उभरेगा। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पूर्वोत्तर को एशियन देशों के साथ अष्ट लक्ष्मी एक्सप्रेस वे के रूप में जोड़ रहा है। आपसे समझना चाहते हैं कि सार्वजनिक अवसंरचना का ये क्षेत्रीय संतुलन भारत के आर्थिक नक्शे को किस तरह रीडिजाइन कर रहा है।
2: देखिए, दो तीन चीजें हैं, हमें ये देखना होगा पिछले कुछ सालों से। एक तो हमारा जो एयर पैसेंजर है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बहुत तेजी से एयर पैसेंजर बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जो कार्गो है, एयर कार्गो है, वो उसकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का भारत की तरफ रुझान है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हो, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की वजह से आ रहा हो, चाहे वो गोवा या एक उत्तराखंड में जो हिल एरिया का टूरिस्ट है उसकी वजह से आ रहा हो, तो कई कारणों से टूरिस्ट भारत आता है, इलाज से लेकर पर्यटन तक और धार्मिक कारणों से, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुझे डाटा अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप डाटा देखेंगे तो लगातार तीनों सेक्टर में टूरिस्ट बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट हों और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हैं उनको बेहतर बनाया जाए और उनको एक नई पहचान दी जाए। अगर आप बेंगलुरु का टर्मिनल 2 अगर देखें तो बेंगलुरु एक आईटी का बहुत बड़ा हब है और इसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि वहां पर एक किस प्रकार से सारी दुनिया की जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका में हमारा कितना ही स्टेक है आईटी का, तो उसका जो ड्राइवर है, की ड्राइवर एरिया है वो बेंगलुरु है। तो वहां पर एक जो लगातार एक पैसेंजर का ट्रैफिक है वो बड़ा है, लगातार बढ़ा है। तो उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उसके पीछे यही रणनीति है कि वहां पर वो व्यवस्था आसान हो और दुनिया के जो बड़े आईटी हब हैं और जो औद्योगिक हब हैं या जो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, उन शहरों को बेंगलुरु से डायरेक्ट जोड़ा जाए, और जोड़ा भी गया है, बेहतर जोड़ा गया पहले से। तो इसलिए बेंगलुरु एयरपोर्ट का अगर उसका हम लोकल पहचान में देखें तो वहां पर उस एयरपोर्ट की खूबी है कि वहां पर पेड़ बहुत लगाए गए हैं, तो उसकी जो थीम है वो एक गार्डन बेस्ड थीम बनाई गई है, तो एक भारत के एक अलग पहचान दी गई है को भारत एक वनों का देश है, भारत में वनस्पतियां बहुत सारी हैं। इसी प्रकार जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है तो उसको भी ये इसी तरह की पहचान दी गई है, वहां पर करीब 100 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं उनके 1,00,000 से ज्यादा पेड़ वहां पर लगाए गए हैं, वो उसको एक सुंदरता के लिए, उसकी क्षेत्रीय पहचान देने के लिए। नॉर्थ ईस्ट हमारा काफी एक रिच कल्चरल और हैबिटेशन का रिच एरिया है, तो उसकी वजह से वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी ये चीज नजर आएंगी। जहां तक गुवाहाटी

0: एयरपोर्ट की बात है तो गुवाहाटी एयरपोर्ट, वैसे तो आज नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें सिविल एयरपोर्ट भी हैं और जो डिफेंस पर्पज के एयरपोर्ट हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। जो पुरानी एयर पट्टियां थी उनको लगातार डेवलप किया गया है और वहां पर जो बड़े प्लेन है, चाहे वो डिफेंस के हों चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, वो कनेक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन गुवाहाटी चूंकि एक मेन एरिया है और वहां पर कहें कि नॉर्थ ईस्ट का वो द्वार है और वहां पर हमें ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत थी और वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसलिए उस एयरपोर्ट को डेवलप करने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को बेहतर करना, क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट जा रही है, अगर वो गुवाहाटी उतरती है तो गुवाहाटी से फिर वो हेलीकॉप्टर और छोटे प्लेन से आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए गुवाहाटी एयरपोर्ट भी रणनीतिक तौर पर उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उससे दिल्ली से बेहतर हुई है। अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट में एक है और लंबे समय से बात चल रही थी और मुझे तो आश्चर्य है कि 2001 में पहली बार ये बात शुरू हुई थी कि हमें जेवर में एक एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन वो लटकते रहा। आखिरकार 2018-19 में इस पे काम शुरू हुआ और ये 2026 की शुरुआत में वो एयरपोर्ट चालू हो पाया। तो ये भी एक सवाल है कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ, जो पहले बन जाना चाहिए था, जब 2000 से बात चल रही थी तो पहले इस पे क्यों फैसला लिया गया। तो जहां पर ये एयरपोर्ट से एक लॉजिस्टिक हब NCR में कनेक्ट हो रहा है और जो ये प्लान है फ्यूचर में कि जो लॉजिस्टिक प्लेन है उनको जेवर में उतारा जाए ताकि जो दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहां पर पैसेंजर प्लेनों को ज्यादा उतारा जाएगा, तो इससे एक बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर। और कई बार हम सुनते हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट आती है कि लैंडिंग के लिए इतना टाइम पालम पर लग रहा था कि एक घंटे हवा में चक्कर काटता रहा क्योंकि लैंडिंग के लिए उसे रनवे खाली नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर होगी और जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से वहां पर एक लॉजिस्टिक हब धीरे धीरे बन रहा है और आने वाले समय में सारे अगर कार्गो प्लेन वहां पर लैंड होते हैं तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का तो विकास होगा ही, बाकी जो दिल्ली के एयरपोर्ट हैं उनका जो लोड है वो काफी कम होगा। और अभी रिसेंटली अगर हम एक एग्जांपल दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, तो जब किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनकी पर्सनल कार, सामान, तमाम कमांडो उनके पहले आ जाते हैं, दोनों पहले। तो दो बड़े बड़े प्लेन उनके जब आए तो वो जेवर एयरपोर्ट पर उतरे, क्योंकि जब दो बड़े प्लेन अगर वो पालम पर उतरते तो वहां पर वो दो दिन खड़े रहते तो वहां पर उतने पार्किंग का स्पेस की प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। तो अगर ब्रिक्स में रिसेंटली जो ब्रिक्स हुई तो उनके प्लेन दो दिन वहां पर खड़े रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फायदा है कि इस तरह की कभी स्थिति आती है तो उससे भी फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इनके।
1: सुरेश जी कहते हैं कि एक राष्ट्र केवल भवनों से नहीं बनता, अपनी स्मृतियों और शहीदों के सम्मान से भी बनता है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण करवाया गया हो, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर अनगिनत शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, और जब एक देश का युवा जाकर उन शहीदों के नाम को स्पर्श करता है तो एक अलग अनुभूति होती है। साथ ही साथ नेशनल पुलिस मेमोरियल भी बनाया गया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये स्थल देश के आम नागरिक में कैसे देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं और विकसित भारत बनाने की दिशा में इनकी क्या भूमिका है।
2: निश्चित ही इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, हम सब इंडिया गेट में जाते रहे हैं, अमर जवान ज्योति है वहां, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी में जो है राष्ट्रपति स्वयं जाके वहां श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन याद रखें कि वो अंग्रेजों ने बनाई थी और उसमें विश्व युद्ध में जो भारतीय या भारतीय सेना में उस वक्त जो अंग्रेजों के अंतर्गत था उन लोगों के नाम जो है वहां जोड़े गए हैं। भारतीय थे, इसमें कहीं कोई भी फौजी का जब शहीद होता है तो वो सम्मान के पात्र है, लेकिन भारत का अपना, भारत ने इतने युद्ध लड़े 47-48 में, 62 में, 65 में, करगिल में, उनको भी तो सम्मान देना जरूरी है। तो वो लोग जिन्होंने नए भारत के लिए अपना प्राण निछावर किए, जो शहीद हुए, जिनके वजह से हम लोग हैं आज चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्या उनको एक श्रद्धांजलि, एक ऐसा एक उपयुक्त स्थल आवश्यक नहीं था क्या नवीन भारत में? बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि जो वार मेमोरियल बना है उस दिशा में हमारे अंदर न सिर्फ एक स्वाभिमान का भाव जगाता है अपितु हमारे फौजियों के प्रति, हमारे सिपाहियों के प्रति, जवानों के प्रति हमें एक सम्मान पैदा होता है और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं देश के लिए, कि मैं भी इतिहास में अपना एक जगह पाऊं, कि मैं इन वीरों ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उस कारण जो है आज हम आजादी का जो है चैन की सांस ले पा रहे हैं। उस महत्व को समझने की आवश्यकता है। जलियांवाला बाग, मैं अभी भी अमृतसर गया था, जलियांवाला बाग में जो है मैं समझता हूं कि हमारे सबसे खूनी अगर अध्याय हमारे इतिहास में रहा तो वो वहां रहा। बेकसूरों को मार दिया गया गोली मारकर और

0: उनके लिए एक ऐसा स्मृति स्थल आवश्यक नहीं था क्या? बिल्कुल, वो उपयुक्त हो। पहले भी मैं गया हूं वहां, तो बड़ा मायूस होकर मैं लौटा कि एक ऐसे जगह जहां कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं, उन जनसाधारण का, जिनको मात्र इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि वे भारतीय हैं, इसलिए उनको भून दिया गया, क्या उनके बलिदान को क्या हम कम आंके? तो मैं समझता हूं उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, हमारे पुलिस कर्मी दिन रात 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, क्या उन पुलिस कर्मियों के लिए? और याद रखें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, अर्धसैनिक बल भी पुलिस में ही शामिल होती है, और उन्होंने चाहे वो बीएसएफ हो या आईटीबीपी हो, इन लोगों ने भी बहुत शहादत दी है हमारे सरहदों में, तो उनके लिए क्या जरूरी नहीं है? वो एक उत्तर पूर्व में एक आलेख है जो उनके वहां लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया, दे गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो। क्या उनको हम लोग सम्मान करें, उनके स्मृतियों को सम्मान करें, उनके परिवारों को एक जगह मिले जहां जाके वो अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं? क्या ये कोई भी देश, ये कृतज्ञता ज्ञापन होता है कि उन लोगों के लिए, ये नहीं कि वो जो है उन्होंने अपना कर्तव्य किया। क्या हर आदमी ऐसा कर्तव्य कर सकता है क्या? तो उस पराक्रम को पहचानना, उसको सम्मान देना, और वहां जब हमारे राष्ट्रीय नेता जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उन पुलिस कर्मियों को बता भी रहे हैं जो वर्तमान में भी है, कि पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है। ये संदेश बहुत आवश्यक है, और ये नए भारत की पहचान है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, उनका वो भारतीय दृष्टिकोण है कि उन्होंने जो है इन चीजों को भी उतना ही महत्व दिया जितना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय सभागार निर्माण करने के लिए दिया हो, उतना जितना उन्होंने नए भवनों के लिए और नए संसद के लिए दिया हो, वही महत्व जो है उन्होंने इस बिल्कुल संजीदगी की जहां जरूरत है, संवेदनशील जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी उन्होंने उतना ही दिया।
1: इसी चर्चा को मदन जी अगर थोड़ा आगे लेकर चलें, तो स्मृति वन जो लगभग 470 एकड़ में है, और हमारे श्रोता जानते हैं कि जब कच्छ में भूकंप आया था उसके बाद इसका निर्माण वहां पर करवाया गया, उसमें मेमोरियल के साथ साथ अर्थक्विक म्यूजियम और डिजास्टर अवेयरनेस कंपोनेंट्स भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये भारत में मेमोरियल को लिविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की नई प्रवृत्ति का एक शानदार उदाहरण है?
2: निश्चित रूप से है, क्योंकि इसलिए है, भुज में जो भूकंप आया था तो उसकी त्रासदी, उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और काफी लोग उसमें मारे गए थे, तो मुझे लगता है कि ये देश में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। तो एक जब कोई भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है कुछ समय तक राहत कार्य चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ और फैसले होते हैं, लेकिन उसके बाद वो घटना भूल जाते हैं लोग, फिर उसके बाद फिर कोई भूकंप आता है तो फिर वही चीजें होती। लेकिन गुजरात में इस भूकंप को आया तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, ये स्मृति वन भी बनाया गया, और उसमें जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया गया है, और मैं समझता हूँ कि हालांकि भुज में जो उसके बाद भुज में जो भी मकान बन रहे हैं वो अर्थक्विक रेजिडेंस बन रहे हैं, ये भी एक बात है, लेकिन ये जो स्मृति वन वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है, क्योंकि एक भूकंप एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। आज तक साइंस इतना आगे बढ़ गया लेकिन भूकंप का प्रिडिक्शन अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन भूकंप से 100% बचाव संभव है। भूकंप रोधी इमारतें बनाई जा सकती हैं, और जो इमारतें पहले से भूकंप रोधी नहीं हैं, उनको भी आप थोड़ा बहुत काम करके भूकंप रोधी बना सकते हैं। यही चीज शायद स्मृति वन में भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आप भूकंप से बच सकते हैं, कैसे लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए, और इसके अलावा बाकी जो उन लोगों की स्मृति बनाया गया, जो लोग उसमें मारे गए, उन लोगों को श्रद्धांजलि तो है ही। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को देश के दूसरे हिस्सों में प्रचारित किए जाने की जरूरत है, और भूकंप को लेके, भूकंप के खतरों को लेके और इसके बचाव के तरीकों को लेके लोगों को बड़े पैमाने पर अवेयर किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो साइंटिफिक रिपोर्टें हैं वो अभी भी हमारे लिए चेतावनी वाली हैं, और जो ये बताती हैं कि भारत के बहुत सारे हिस्से भूकंप के जोन 4 या जोन 5 में हैं। तो जोन 4 और जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है, तो इस जोन में बहुत सारे इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ के इलाके हैं, दिल्ली के कई इलाके जोन 4 में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है इसे प्रचारित कर सकें, तो एक लोगों को जागरूक करने में काफी अच्छी मदद मिलेगी, और लोग अपने घरों को भूकंप से बचाव के अनुरूप बनाने में सफल भी होंगे।
1: सुरेश जी, अब उस जगह चलते हैं जहां से पूरे देश की नीतियां बनती हैं। दशकों तक भारत उस संसद में बैठता रहा जिसे अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के लिए बनाया था। लुटियंस दिल्ली की उन चौड़ी सड़कों और इमारतों में एक किस्म की अहंकार और दूरी की गूंज थी। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन

0: बना। एक शिक्षाविद के नाते आपसे ये समझना चाहेंगे कि केवल ईंट और पत्थर का बदलाव है या फिर ये बदलाव उस सोच का है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान भी वहां दर्शाई गई है। भविष्य में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी उसके लिए भी वहां पर सुविधाएं की गई हैं। कह सकते हैं कि वो ईंट और पत्थर के बदलाव से कहीं ज्यादा भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक साथ ही साथ विकास की नई रफ्तार को गति देने वाला वो इमारत है।
1: निश्चित ही देखिए, जो नया संसद भवन है वो नए भारत की पहचान है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन में सेंगोल जो प्रतीक है, वो प्रतीक है कि क्या संसद का अधिकार क्या है, उसका प्रतीक है, वो जनता का प्रतीक है सेंगोल, वहां स्थापित किया। और याद रखिए, सर्वधर्म प्रार्थनाएं वहां हुई थी, उसके साथ वो शुरू किया गया था। भारत के जो जिसे कहते हैं कि सर्व पंथ समाभाव के भावना को प्रतिनिधित्व किया गया वहां, प्रतिबिंबित किया गया वहां। और जब ये उद्घाटन हुआ तो आप उस उन भवनों को देखेंगे, उस नए भवन को देखेंगे तो उसमें नए भारत की, वो कहीं विदेश से कोई किसी चीज को आयातित किया नहीं है। हालांकि

0: जाता है कि जो पुराना संसद भवन है वो भी जो है आप सांची में जो एक बना हुआ था स्तूप उसी से प्रेरित होकर बनाया था, लेकिन यहाँ प्राचीन हमारे सभ्यता के प्रतिबिंब होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से और जैसे आपने कहा भविष्य की अगर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे और प्रतिनिधित्व की जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी आजादी के समय जो आबादी थी उससे 10 गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है, आज उस आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं, जहां लाखों लोगों का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं क्या वहां संख्या बढ़ना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में और हम आज बात कर रहे हैं कि एक तिहाई प्रतिनिधित्व हमारे माता और बहनों के लिए हम सोच रहे हैं, उसका विधेयक प्रस्तुत हो चुका है, और जब ये संख्या बढ़ेगी तो उनको कहां बिठाएंगे। कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता था तो सेंट्रल हॉल में जाना पड़ जाता था, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर उनको कहां बिठाया जाएगा। बाकी व्यवस्थाएं की गई है, उससे आपको स्पष्ट होता है कि वहां उस विरासत और विकास दोनों को प्रतिबिंबित करते हुए उसको जो है तैयार किया गया है और आधुनिक भारत का एक प्रतीक बनकर वो उभरा है। तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित ही जो पुराना संसद भवन है वह भी हमारा है, उसमें हमारे भारतीय जो मजदूर है उनके मेहनत से वो बना है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस संसद भवन में निर्णय लेते हैं जो हमने बनाया, वो किसी विदेशी का बनाया हुआ नहीं है, वो नए भारत का जो है बुलंद आवाज है।
1: मदन जी, जब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि 25 वर्षों की इस यात्रा में बनी इन सार्वजनिक संरचनाओं में से आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या होने वाली है, उनका आकार, उनका स्थापत्य कला या फिर उनका उपयोग या वो कहानियां जिन्हें वे आने वाली पीढ़ियों को सुनाने वाले।
2: देखिए, तीनों बातें सही हैं। ये एक हमारे विरासत को भी प्रदर्शित करती हैं, दूसरा हमारी जरूरत भी है। जैसे मैंने कहा कि सर ने भी बताया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों बनानी पड़ी, जरूरत भी थी उसकी सिर्फ, और बाकी जो भारतीयता की पहचान है एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है वो भी है, तीनों बातें हैं। इसी प्रकार अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा हमारी विरासत की पहचान भी है, हमारी आज की जरूरत भी है, और जो एक नई पहचान देने की बात कही है, कर्तव्य भवन उसका नाम रखा गया, तो एक कर्तव्य पथ का जैसे नाम दिया गया, राजपथ नाम चल रहा था, कब से चल रहा था, क्यों चल रहा था, कोई नहीं जानता इस बारे में, और अब तक क्यों नहीं बदला गया कोई नहीं जानता। तो मैं कहूंगा कि जो नए भवन है, चाहे नए एयरपोर्ट है या नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तो ये सबसे पहले हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत थी। सेंट्रल विस्टा की अगर बात करें तो वहां पर जैसे हम 60-70 साल पुराने वो बिल्डिंगें थी, उस समय की जरूरत तब दूसरी रही होगी, उस समय जो सरकारी स्टाफ रहा होगा कम रहा होगा, अब बढ़ गया, तो स्थिति ये थी कि एक ही ऑफिस 4 अलग अलग बिल्डिंगों में चल रहा था, तो उसको एक साथ आने की कोशिश की गई, तो उससे जो एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हुआ। इसके अलावा जब वो बिल्डिंगें बनी उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हम शास्त्री भवन से लेकर उद्योग भवन में देखते थे कि जिस कमरे में निकलो वहां पर तारों के इतने मोटे वहां पर गुच्छे लटके रहते थे, तो वो सिस्टम नई भवन में इस तरह से बनाया गया है कि आपका वो सीधे सर्वर से निकलेंगे और सर्वर तक ही पहुंचेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेके इन तमाम सेंट्रल सेक्रेटरिएट के बिल्डिंग में बहुत बड़ा इशू था, फायर सेफ्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इनको फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, भूकंप की हम बात कर रहे थे अभी, तो भूकंप रोधी भी बनाया गया, तो ये भी एक चुनौती थी। इसके अलावा जिस जमाने में बिल्डिंगें बनी होंगी उस समय सिक्योरिटी का उतना जरूरत नहीं रही होगी या उतना खतरा नहीं रहा होगा, आज सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस सिक्योरिटी को भी इनमें ध्यान में रखा गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा रहेगा, कहाँ पर उसके दूसरे जो उनके नेटवर्क होते हैं सिक्योरिटी के, उसके भी सारी व्यवस्था की गई। पार्किंग बहुत बड़ा इशू था। अब आप जो पुरानी जो बिल्डिंगें थी सेंट्रल विस्टा की, जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट जिसे हम कहेंगे, तो उसकी बिल्डिंगों में पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी, और आज जो नए हमारे कर्तव्य भवन बने हैं तो वहां पर इस तरह से मैनेज्ड पार्किंग है कि अगले कई सालों तक उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, और अब तो उसे मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक विरासत भी है और हमारी जरूरत भी है और एक नई पहचान भी इसके जरिए दी गई है।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, इन सार्वजनिक पहचानों के माध्यम से भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है?
0: एक आत्मनिर्भर भारत जो अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करता है, और साथ ही साथ वो आधुनिक सुविधाएं जिसकी आवश्यकता है हमारे अपने लोगों के लिए, और उनके अंदर एक धैर्य और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाता है। जब नए भवनों को देखते हैं हमें गर्व ही नहीं आत्मविश्वास भी होता है, तभी जाकर हम जो है सही मायने में विकसित भारत की दिशा में जो है बहुत सकारात्मक और मजबूत कदम उठा पाए।
1: इमारतें बनती हैं लेकिन पहचान बनने में समय

0: लगता है। पिछले 25 वर्षों की सार्वजनिक नेतृत्व यात्रा को देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक तस्वीर लगातार विकसित होती दिखाई देती है। विकास की नई संरचनाएं, प्रशासन की नई जगहें, इतिहास की नई स्मृतियां और भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के नए मंच। लेकिन इन सब की अंतिम कसौटी एक ही है, क्या वे स्थान आने वाले वर्षों में नागरिकों के जीवन, भारत की स्मृति और दुनिया में भारत की पहचान को और बेहतर कर रहे हैं। और इन सब के साथ ही आज का ये विशेष अंक समाप्त होता है। सुरेश जी आपका, मदन जी आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी दाए जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 7:45 हो चुके ने। साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो।
3: दिस इज आकाशवाणी जलंधर। इन द हसल ऑफ डेली लाइफ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू पॉज्ड टू लिसन टू नेचर? Join us in these moments as we are going to explore the calming, beautiful world of avian life. Sandeep Chahal is going to present a talk, My Love for Birds. Let's listen to it.
4: There are over 10,000 species of birds in the world. Researchers all over the world have estimated that 1/8 of the world's 10,000 bird species could be threatened with extinction by 2100 AD due to drastic climatic changes, environmental pollution and destruction of natural habitat. Humans have already caused the extinction of around 1,000 species of birds over the past millennium. Conservationists opine that the best way to minimize bird species extinction is to significantly expand the protected area by aggressively reducing the greenhouse gas emission and decreasing the destruction of bird habitat. Renowned ornithologist Dr. Oliver Austin, in his book Birds of the World, says that as per the fossils record, there were 11,500 bird species in the Pleistocene era, about 250,000 years ago. Unfortunately, some 100 unique bird species are known to have become extinct during the past 600 years. By 210, out of the already 1,000 bird species threatened, nearly 1/8 of the bird species will become extinct. The house sparrow, Passer domesticus, is a member of old world sparrow family Passeridae, considered by some scientists to be relative of the weaver finch family. It occurs naturally in most of the Europe, America, and much of Asia. It has followed humans all over the world and has been intentionally or accidentally introduced to most of the Americas, sub-Saharan Africa, New Zealand and Australia, as well as urban areas in different parts of the world. It is colloquially known as English sparrow to distinguish it from native species American sparrow. Wherever humans build, house sparrows sooner or later come to share their abodes. Humans provide food and home, but not companionship. The house sparrow is a cyanthrope, that is, they are wary of man. According to reports of a leading bird conservationist group, BirdLife International, 64% of globally threatened birds, most of them in the tropics, are threatened by unsustainable forestry. 1/8 of the world's known birds, or 1,211 species in total, face extinction in future. In total, 129 bird species have been classified as extinct since 1500 AD. As per the data of Royal Society for Protection of Birds, RSPB, United Kingdom, the house sparrow Passer domesticus is now placed alongside 39 other globally threatened birds

0: हुण तुसी सुन रहे सी सुरिंदर कौर दी आवाज दे विच एक खूबसूरत पंजाबी गीत मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दी आकाशवाणी दा यह जलंधर केंद्र है। रात दे 8:45 होण जा रहे ने। हुण तुसी सुनोगे समाचार संध्या 9 बजे न्यूज एट 9 ते 9:15 प्रोग्राम स्पॉटलाइट दिल्ली केंद्र तो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
1: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
2: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला

0: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतकम में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन

0: आज यह एक वास्तविकता है।
1: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
0: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई है।
2: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
0: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
3: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे

0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inked 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam, results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hulson wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of five-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning, briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
3: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड, एन इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
2: एक integrated transport and logistics authority का निर्माण किया जाएगा।
1: Mr. Vaishnav said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund for equity investments in small and medium enterprises.
2: इसमें 10,000 करोड़ रुपीज का
3: 10,000 करोड़ रुपीज MSME ग्रोथ फंड विल बी एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू MSMEs विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। द फंड विल बी ऑपरेटेड विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड विल बी प्रोफेशनली मैनेज्ड टू इंश्योर इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ कैपिटल। द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड MSMEs विद नियरली हाफ ऑफ इट्स कॉर्पस एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दिस फोकस एम्स टू सपोर्ट MSMEs इन leveraging the significant growth opportunities emerging in the sector.
2: Manufacturing se related MSMEs jinke liye bahut badi opportunities abhi aa rahi hai.
1: Prime Minister Narendra Modi in a social media post said this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem. Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi stated this while interacting with Global System for Mobile Communications Association board members at Seva Teeth today ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress

ते दस वाचक ने हुन पेश ने हुन तक दिया मुख खबरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत ट्रांसपोर्ट अते लॉजिस्टिक अथॉरिटी दे गठन नू मंजूरी दे दिती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों नू सेवा अते दया दी भावना दे नाल काम करन दा सद्दा दिता है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नू हवाई फौज दा नवा मुखी नियुक्त कीता है। बेल्जियम विच जन्मे विज्ञानी फ्रांसिस हालजेन नू भौतिक विज्ञान विच नोबल पुरस्कार देन दा ऐलान कीता गया है। भारतीय खुराक सुरक्षा अते मियार अथॉरिटी ने राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां नू आउण वाले त्योहारां दौरान मिलावटी अते असुरक्षित भोजन विरुद्ध विशेष मुहिम शुरू करन लई कहा है। पंजाब दे जल सप्लाई मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने 267 करोड़ रुपए की लागत वाली नहरी पानी आधारित बहुपक्षी जल सप्लाई स्कीम का अमृतसर च उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने पटियाला की अनाज मंडी विखे झोने की खरीद का लिया जायजा। सूबा सरकार ने बिल लियाओ इनाम पाओ मेरा बिल स्कीम विच एक होर साल का वाधा करन नू प्रवानगी दिती। भारत की औरतों की क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉरमैटा विच कप्तानी छड़ी। खिडारी वजो भारत की नुमाइंदगी रहेगी जारी। भारत के वेस्टइंडीज दरमियान 5 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचा की लड़ी का पहला मैच लखनऊ च खेडिया जा रहा है। इस सन हुण तक दियां मुख खबरां। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਧਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤੱਖੀ ਦਾ ਕਲਾਰਨੇਟ ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਰਾਗ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰੀ।

0: जी हाँ, आकाशवाणी ने भी डोर खिंची है और साढ़े दोस्त साढ़े तक पहुंच गए ने जी। आओ फिर गल करते हैं अपने इस प्रोग्राम दे सब तो पहले लकी कॉलर दे नाल। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी कौन बोल रहे हो?
1: सुंदर बोल रहे जी, नालागढ़ से।
0: जी सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच।
1: मेहरबानी जी।
0: तो सुंदर जी दसो आज फिर केड़ा गीत सुनाना सुनना चाहते?
1: महेंद्र कपूर दा सुना दो जी। कोई भी,
0: कोई भी सुना दिए। फिर भी कोई खास कोई फिल्म?
1: चलो कोई भी चलूंगा जी।
0: अच्छा चलो ठीक है जी। ते सुंदर जी हिमाचल दा मौसम किदां दा है?
1: जी ठीक ही है।
0: हाँ मतलब हले ठंड नहीं आई है?
1: ठंड आ गई जी,
0: थोड़ी जी आ गई है। चलो जी थोड़ी जी ठंड इधर भी आ गई है, पंजाब दे विच भी ठंडा ठंडा माहौल हो गया, लेकिन दोपहरी गर्मी हो जाती है।
1: छिट्टा छोड़ा हो गया जी आज।
0: जी चलो ठीक है जी। सुंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करन दे लई, ते तुहानू महेंद्र कपूर दी आवाज दे विच जरूर गीत सुनावांगे। तो साढ़े व्हाट्सएप दे जरिए भी साढ़े दो सैट तक पहुंच गए ने। ते सब तो पहला मैसेज सैट तक पहुंचा है जिला मुरादाबाद ग्राउंड दुल्लापुर उत्तर प्रदेश तो, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार ते नरगिस खातून दा। हुणे हुणे मैसेज आया है जी, गांव कुम्हार हैड़ा सहारनपुर तो, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया इब्राहिम ते सद्दाम दा। ते जड़े जड़े दोस्त मैनू हुणे मैसेज करनगे ना उन्हानू मैं शामिल करांगी प्रोग्राम दे विच। ते आओ जे फिर महेंद्र कपूर दी आवाज दे विच सुनदे आं गीत फिल्म गोपी दा।

0: जी हाँ, कलयुग तो चल ही रहा, सब नू दिख रहा है कि हो रहा है वक्त, मतलब कि इंसानों नू दिखा रहा है। खैर, जेकर कहते हैं कि तुसी चंगा सोच रखो, चंगे विचार रखो, तो हो सकता है कि आने वाला वक्त जड़ा है वह सही हो जाए, कलयुग खत्म हो जाए छेती, तो सतयुग वापस आ जाए। तो आओ जी, अगले दोस्त सेट तक पहुँच चुके ने, करते उन्होंने गलबात। हैलो, हाँ जी जी, नमस्कार।
1: हेलो जी।
0: हाँ जी, थोड़ी आवाज सेट तक पहुंच रही है जी।
1: आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम जी।
0: आपकी आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है मेरे पास, तो अपना नाम बता दीजिए।
1: बहुत कम आवाज आ रही है आपकी जी। मैं श्रवण कुमार रंगवा, गांव हियावाड़ी, जिला फाजिलका से बोल रहा हूँ जी।
0: जी श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत, और बताइए गाना कौन सा सुनना है फटाफट।
1: गाना मैडम जी ज्योति फिल्म से सुना है, जो थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, घोड़ा ऐसा बनता है।
0: जी जरूर, हम आपको गाना सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: हाँ शुक्रिया जी। सुहाजी को जरा साथ में जरूरी तारीखा जी।
0: जी सबकी अटेंडेंस लग गई है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो
1: अब आवाज आ रही है आपकी?
0: अच्छा, अब आवाज आ रही है, चलिए शुक्र है जी, आपको आवाज तो आ गई। चलिए सरवन जी, आपको गाना हम जरूर सुनाएंगे, तो कल फिर से ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हमारे जो दोस्त है हुन जड़े सानू मैसेजेस कर रहे ने, हुने हुने जस्ट मेरे पास मैसेज पहुंचा है विलेज बहामाणी वाला फाजिलका तो, गुरंदिता मल्होत्रा ते शीतल मल्होत्रा दा। ते जिद्दां सरवन जी ने फरमाइश की सी फिल्म ज्योति दा गीत सुनना चाहते ने लता मंगेशकर दी आवाज दे विच, आओ फिर सारे जने सुनते हैं।

0: झोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि यह अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। सम्मेलन में करीब 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। निदेशालय ने करीब 8 किलो 300 ग्राम विदेशी सोना बरामद किया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास निगरानी कर रही थी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
1: देश में जिस तरह से GDP बढ़ रही है 7%, 8%,
3: एज द कंट्री

नवे 655-3607 यानी कि 9465-3607। इस नंबर ते तुसी सब तो पहला अपना नाम लिखो, फिर अपने शहर दा नाम ते जेड़ा भी गीत तुसी सुनना चाहो उस गीत ते कुछ बोल लिखो, ते जिदे ही मैसेज साडे तक पहुंचेगा उस मैसेज नूं असीं इस प्रोग्राम ते जरूर शामिल करांगे। सो जद तक पहले कॉलर तो उस कॉल दे राहीं साडे नाल जुड़दे ने ते कुछ दोस्तां दे मैसेजेस साडे तक पहुंचदे ने, ते आओ सुणदे हां तद तक एक प्यारा जिहा गीत।

0: बिल्कुल जी, नसीबो चेते कर दिया। कितना जगह रहे इंद्रजीत निकल साहब दी आवाज़ बैठे प्रोग्राम सुखा चल रहे जी, और दोस्त भी आगे ने। हेलो
1: हेलो सत श्री अकाल सर जी।
0: सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुखा दे। हाँ जी राजू जी, की हाल चाल है थोड़े?
1: बहुत वधिया ने सर जी, ठीक
0: ठाक। बस ठीक ठाक है जी, साढ़े भी वधिया ने। थोड़ी कॉल आ गई, हाल चाल होर वधिया हो गए। सो की कर रहे थे इस वेले? की कह रहे थे? बिच आवाज फिर कटेगी, कोई तकनीकी खराबी दे करके ना आवाज कट जाती। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो केड़े गीत की फरमाइश लेके आए हो? बिल्कुल ठीक है जी, थोड़ी फरमाइश में पूरी करने जा रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू जी। सो बिल्कुल दोस्तों, साडा व्हाट्सएप नंबर 9465536077, यानी कि 9465536077। इस नंबर पर तुम मैसेज के राही फरमाइश भेज सकते हो जी। साढ़े नंबर पर मैसेज करने के लिए तुम अपना नाम, अपने शहर का नाम, तो जोड़ा भी गीत तुम सुनना चाहते हो उस गीत कुछ बोल लिख के भेजने ने, तो आप उस मैसेज में भी इस प्रोग्राम से जरूर शामिल करा। सो एक बार एक नज़र वट्सएप मैसेजेस से भी मार लें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस जोड़े ने साढ़े तक पहुँच गए हैं जी। आओ देखते हैं सब तो पहला मैसेज कितों पहुँचा है। सो सब तो पहला मैसेज पहुँचा है जी साढ़े को जलालाबाद वैसट तो, भेजन वाले सुरेश गगनेजा जी, इन्होंने नाल ने पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। तो इस एक मैसेज हो रहा है जी, ये मैसेज आया है साढ़े को वड़िंग खेड़ा पंजाब तो, भेजन वाले ने मिंटू टॉमस जी, इन्होंने नाल जी पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा। तो एक मैसेज होर पहुँचा है जी, ये मैसेज भी असं देख लें कितों आया है जी। सो यह मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी मजनू का टीला तो, भेजा है कमल बालूजा जी ने, इन्होंने नाल ने मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, गुड़िया माही मलिक, इशिता अरोड़ा। तो आओ जी फिर इन्होंने सारे दोस्तों की फरमाइश से सुनते अगला प्यारा जहा गीत।

0: बिल्कुल जी, हमें नज़र लगाना लें काला टिक्का ला के रखा कर गीता जगह मैंने किरा तो लखा के वहाँ से बेचे प्रोग्राम शारे जी सो गाते अगले दोस्तों के आगे नहीं। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सौगात।
1: थैंक यू
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। कौन गल कर रहे हो, कितों गल कर रहे हो? वैसे मैं

होगी? अच्छा चलो बहुत अच्छा है जी, पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहा करो। हाँ जी, हाँ जी सुनाओ जी, सुनाओ। वेरी गुड वेरी गुड गुड गुड गुड गुड गुड। सो चलो जी, थैंक यू जी। हूँ मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ, गीत प्ले कर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, थोड़ी फरमाइश मैं पूरी करने जा रहा हूँ। ओके जी ओके।

बिल्कुल जी, मौसम वांगू बदल गए जी, असी रुखा वांगू खड़े रहे। गीत जगह रहे साबरकोटी साहब की आवाज़ से वेखते प्रोग्राम चल रहा जी सुगात। तो एक मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी, देखते हैं किहड़े दोस्त का मैसेज आया है। सो यह मैसेज पहुँचा है जी साढ़े को अनारकली बाजार चकराओं तो भेजा है सुनील पाठक जी ने। इन्ह के नाल ने कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्य मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक। तो गुरदास मान साहब की आवाज़ के इन्होंने गीत की फरमाइश की है। तो फिर आओ जी इन्हों की फरमाइश पूरी करते हैं अगले इस प्यारे जे गीत के नाल।

0: बिल्कुल जी, हम पर पार हुई है, तेरे विचकार हुई है। गीत जगह सतेंद्र सरताज साहब की आवाज़ से प्रोग्राम चल रहा जी। सौगात नंबर है साढ़ा 0181 2341 171 यानी कि 0182342171। सो यही नंबर डायल करके दोस्त भी आ गए जी। हेलो,
1: हाँ जी,
0: नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सौगात विच।
1: मिठी मिठी और प्यारी प्यारी सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है जी?
1: बढ़िया बढ़िया।
0: वाह जी वाह, क्या बात है। बंसी लाल जी, की हाल चाल ने थोड़े?
1: बल्ले बल्ले हो रही है।

0: कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं प्रभ मिलने का चाओ। इस शब्द का गायन किया सी भाई सतविंदर सिंह अते भाई हरविंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे ने। प्रभु नाल प्रीत मिलाप दा सुपाग हर किसे नू प्राप्त नहीं हुंदा। विशेष गुणा वाली जीव रूप स्त्री जां गुरसिख ही ए लाहा लै सकदे हन। हुण प्रश्न है कि ओ केड़े गुण धारण करिए कि प्रभु वस विच आ जावे। बाबा फरीद जी 126वें श्लोक विच प्रश्न करदे ने, कवण सो अखर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेसो हाउ करी, जित वस आवै कंत। ते आप जी खुद ही 127वें श्लोक विच उत्तर भी दिंदे ने, निवण सो अखर खवण गुण, जेहबा मणिया मंत, ए त्रै पैणे वेस कर ता वस आवी कंत। पर सवाल ए भी है कि किना गुणा करके प्राणा दे साई प्रभु नाल मिलया जा सकता है। ना मेरा रूप है, ना मेरे पास बुद्धि है, मैं तां दूर परदेस विच वसदी हाँ। ना मेरे पास तन है, ना जोबन है, मैं तां अनाथ हाँ। हे प्रभु जी मेरी सार लो। हे प्रभु मैं तां तैनू ढूंढ ढूंढ के वैरागण हो गई हाँ, दर्शना दी तिहाई हाँ। मैनू साध संगत बख्श के मेरी तृष्णा अग्नि शांत करो। राग गौड़ी पूर्बीज फरमान है, कवन गुण प्राण पात मिलाओ मेरी माई। ए वार्ता सुना रहे ने डॉक्टर निशा शर्मा।
1: ए इलाही फरमान श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी पूर्बी महला पंजमा सिरलेख अधीन उचारे शब्द दी पंक्ति है। इस पंक्ति अनुसार प्रभु प्राणा दा दाता है, सिरजन हार है। जपजी साहिब दे आरंभ विच मूल मंत्र विच असी उस परमात्मा दे गुण गांदे होए गुरु नानक देव जी दे इना शब्दां नू रोज दोहरांदे हां। परमात्मा एक है, सारी सृष्टि विच सर्वव्यापक है, उसदा नाम सच्चा है, ओहो सिरजनहार है, उस

मैं पेख्योरी ऊंचा, मोहन सबते ऊंचा। इस शब्द गायन की तसी पाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

सतिया मन संतोख उपजै देने ते विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सुभ करि संसार चोरा जारा तै कुड़िया रख रब विकार एक होंदा खाए चले।

0: अंडर जरे पूजा खानी सित जा सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जन तो पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता की चिंता भी करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस इस दीवान अभग नानक सच्चे नाम क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख नेकियां चंगियां लख पन्ना परवान लख तप ऊपर तीर्था सहजोग बेबान लख सूरतन संग्राम रण में छूटे प्राण

0: जे कोई तक वेरती और तुम्हों नान पहे बाहरा कोरे रंग न सोए पै विच खुम चढ़ाइए सरपतन हो नानक भगती जे रपै कूड़े सोए ना कोई महला पहला
1: लपा बे राजा मैं तकूर हुआ सिकदार का।

0: मूरत पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख दुआर जतीस दावे जुत न जाने छड बे कर बार सब को पूरा आपे होए कट न कोई अके पत प्रमाण पीछे पाए ता नानक तुलिया जापे मल्ला पहला
1: वदी सुवज नान का सच्चा वेके सोए सबनी शाला मारियां करता करे सो होए अगे जात न जो

0: अनपोनमान अकल लिब लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिटिया जनमात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपार परे पायो आपार हृदय अंतर तारेओ दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारेओ सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर के प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंग समत गुर अमर अमर वरताए ओ गुरु रामदास कल उचरे तै अटल अमर पद पाए ओ।
1: संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांति उपजै दुर्त दुरंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटै संयम सत संतोख सील सनाहो मफुटै सतगुर प्रमाण बिद नै सिरयो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितों सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनित नाम निधान रिद्ध सिद्धता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कल उचरे तै हर प्रेम पदार्थ पायो।
2: प्रेम

गुर जिनको सो परसन मान अभिमान निवार जिनको गुर सो परसन शब्द लग पव जल तार परचो परमान गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल।

सतगुर नाम एकले मन जपे धड़ो, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, तारण तरण खेण मातर जा को दृष्ट तारे, शब्द रद बिचारे काम क्रोध खोवे जियो, जियन सबन दाता अगम ज्ञान देखे आता, एन सत्यान तावे पल कन्न सोवे जियो, जाको देख तज

0: रामदास राखू सरना।
1: सुकह टल गुर सेविया अहनिस सहज सो भये, दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय।